आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: विद्या ददाति विनयम्, विद्या विनय देती है, विनम्रता का वरेण्य गुण प्रदान करती है। इस श्लोक को हम बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन विद्या है क्या? सामान्यतः हम विद्या और ज्ञान को समानार्थी मानते हैं। जिसने अनेक ग्रंथों को पढ़ा है, जिसे अनेकानेक उदाहरण याद हैं, जो किसी विषय पर लंबे समय तक और धारा प्रवाह बोल सकता है, जिसके पास विश्वविद्यालय की ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, जो शब्दों की माला बनाकर पुस्तकीय ज्ञान के रूप में हमारे सामने परोस देता है, उसे हम ज्ञानी या विद्वान मानते हैं। क्या ऐसे ज्ञान को विद्या की श्रेणी में रखा जा सकता है? ज्ञान और विद्या के अंतर को पुराणों में वर्णित एक कथा द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। महर्षि नारद का नाम सुना होगा आपने। महर्षि नारद परम ज्ञानी थे। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें नारद को महारत हासिल नहीं थी। उनके ज्ञान की कोई थाह नहीं थी। एक दिन वे जंगल में बेचैन हो घूम रहे थे। कभी शिलाखंड पर बैठ जाते, कभी सूखे पत्रों को हाथ में उठाकर बुदबुदाने लगते, कभी वृक्ष के तने से सटकर खड़े हो जाते। उनका मन बहुत अशांत था। कोई ऐसा प्रश्न था जो उन्हें मथ रहा था, अंदर ही अंदर कुरेद रहा था। उसी समय ब्रह्मर्षि का सर्वोच्च पद प्राप्त कर चुके चारों यमज भाई सनत, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार आए और उधेड़ बुन की अवस्था में महर्षि नारद को देखकर बोले, हे महर्षि, आप तो सर्व ज्ञान संपन्न हैं, कुछ ऐसा आपसे छूटा नहीं जो आपने जाना नहीं, फिर भी आप इतने अशांत क्यों?

0: नारद ने उत्तर दिया, ब्रह्मर्षि यही प्रश्न तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सभी गुरुकुलों में अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही। आखिर क्यों? क्या आप इसका कारण बता सकेंगे? उन चारों जुड़वा भाइयों में जो सबसे छोटे थे, सनत कुमार, वे हंसे और बोले, महर्षि इतना ज्ञान प्राप्त करके भी आप अपने अंतर में इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सके? बहुत सहज है ये तो। महर्षि आपने शब्द पढ़ा है, उसका अर्थ नहीं पढ़ा। चकित से नारद ब्रह्मर्षि सनत कुमार की ओर देखते रह गए, फिर बोले, यही तो है ब्रह्मर्षि मेरी बेचैनी का कारण, पर मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। संसार में जाओ और जो शब्द रूपी ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसके अर्थ वहां ढूंढो, तुम्हारी बेचैनी स्वयं ही दूर हो जाएगी। ये सुनकर नारद के जैसे ज्ञान का पाठ खुल गए। विवेक ने बाहर झांका और वो उत्फुल्ल हो बोले, मैं समझ गया ब्रह्मर्षि, अनुभव के बिना ज्ञान प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अभी शब्दों के अर्थ की खोज में संसार में जाता हूं। इस प्रतीक कथा का सीधा साधा अर्थ यही है कि ज्ञान तभी विद्या का रूप लेता है जब वह अनुभव पर आधारित विवेक के सही अर्थ जान लेता है। ज्ञान में हमारी पकड़ शब्द और शब्द तक ही होती है, लेकिन शब्द तभी सार्थक होता है जब उसका अर्थ हम तक पहुंचे। ज्ञान द्वारा अर्जित शब्द के अर्थ को अनुभव और विवेक की आंच में पकाकर जब जीवन में उतारा जाता है तब यह विद्या का स्वरूप ग्रहण करता है। अतः ज्ञान को विद्या की सीढ़ी का एक पायदान माना जा सकता है। ज्ञान से विद्या का क्षेत्र विस्तृत है। ज्ञान जानकारी का शिशु है, विद्या अनुभव की आंच का शिशु है, विवेक की रोशनी का शिशु है। अतः विद्या जीवन को संपूर्ण बनाती है और जो संपूर्ण हो जाता है वो प्रेम रस में डूब कर विनयी हो जाता है। जो सब कुछ जान लेता है वो प्रेम के ढाई अक्षर में लिप्त हो जाता है और उसके पास अहंकार या दर्प के लिए जगह ही नहीं होती। छलकना तो अधजल गगरी की नियति है। जो सचमुच अर्थ को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है आसक्ति के परे, और आसक्ति छूटने पर विनयी के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है ऊसर खेत का सुधार कैसे करें। जानकारी दे रही हैं शविता कुमारी।
2: आज कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेह किसान भाई बहन लोकन, उसर खेत के सुधार कोना करी, ए प्रसंग आइ हम चर्चा कर रहल छी। अम्लीय माटि, एहन माटि पूर्णिया ओ कोशी क्षेत्र में बेसी पाओल जाइत अछि। अम्लीय माटि के पीएच 7 से कम होइत अछि, मुदा उपयोग के ध्यान में रखैत 6.5 पीएच से कम के माटि के सुधारबाक आवश्यकता होइत अछि। स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, उसर खेत के एहि तरह सुधारि सकैत छी। अम्लीय माटि के चून दऽ कऽ सुधारि सकैत छी। चूनक मात्रा 1 टन से 6 टन प्रति हेक्टेयर लागि सकैत अछि, मुदा पहिने 2 से 3 टन चून प्रति हेक्टेयर दऽ कऽ अम्लीय माटि के सुधारल जा सकैत अछि। चून 5 वर्ष में सिर्फ 1 बेर देबाक चाही। आन अम्लीय माटि में नाली बना कऽ 4 से 5 क्विंटल चून प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष व्यवहार कयला सँ उसर खेत सँ नीक उपज प्राप्त कऽ सकैत छी। चूनक व्यवहार माटि जाँच अनुशंसा के आधार पर कयला सँ बेसी लाभ होइत अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, क्षारीय माटि के उसर कहल जाइत अछि। क्षारीय माटि 3 प्रकार के होइत अछि, लवणीय, क्षारीय आ लवणयुक्त क्षारीय। एहि तरहक माटि छपरा, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी ओ पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, रोहतास जिला सबमे छिटपुट रूप सँ पाओल जाइत अछि। लवणीय माटि के पीएच

0: 8.5 से कम, परंतु विद्युत चालकता मोज प्रति सेंटीमीटर से बेसी होइत अछि। ओ विनियम सोडियम 15% से कम रहित अछि। सतह पर रेह जम जाइत अछि, अंकुरण समरूप नहि होइत अछि। क्षारीय माटि के पीएच 8.5 से बेसी, लेकिन विद्युत चालकता 4 मीटर मोज प्रति सेंटीमीटर से कम होइत अछि, परंतु विनियम सोडियम 15% से बेसी रहित अछि। लवण युक्त क्षारीय माटि में दुनू तरहक गुण के मिश्रण पाओल जाइत अछि। एहि माटि के पीएच 8.5 से बेसी आ विद्युत चालकता 4 मीटर मोज प्रति सेंटीमीटर से बेसी ओ विनियम सोडियम 15% से बेसी होइत अछि। एतबे नहि किसान भाई बहिन लोकनि, लवणीय माटि के सुधारबाक लेल पानि के निकासक सेहो व्यवस्था होयबाक चाही। आड़ि के उच्च कऽ देबाक चाही, पानि ओहिमे लागल रहै जाहिसँ लवण घुलि जाय। ओकर बाद पानि के बहा देबाक चाही, जे कोनो नाली के माध्यम सँ बाहर निकालि देबाक चाही। स्नेह किसान भाइ बहिन लोकनि, जाहि माटि मे क्षारीयता आबि गेल हुए ओहिमे पानि के निकास के सुधारबाक संग संग किछु माटि के सेहो सुधारल जाइत अछि, जेना जिप्सम, गंधकीय प्रेस मड, चीनी मिल के उत्पाद, कंपोस्ट, पाइराइड इत्यादि देबाक आवश्यकता होइत अछि। मुदा ओ माटि जांच करेला के बाद निर्धारित करबाक चाही। लेकिन औसतन 50 क्विंटल प्रेस मड, गंधकीय अथवा 200 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टर देबाक चाही। चूनयुक्त माटि में जिप्सम से बेसी नीक प्रभाव पाइराइड के पड़ित अछि, जकर औसत 1.5 से 3 टन प्रति हेक्टर तक आवश्यकता पड़ित अछि। जिप्सम सेहो व्यवहार में लाबि सकैत छी, एकर दर 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर अछि। एहि तरहे उसर खेत के सुधारल जा सकैत अछि, ओ ओहिमे नीक उपज लऽ सकैत छी। एहिक संग आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू

0: न्हांग ह्लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से, जो एक डायटिशियन है। बातचीत का विषय होगा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। डॉक्टर साहब, संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका?
3: बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसा आहार जिसमें कि हम एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, मतलब जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर भी है। वाटर भी हम बैलेंस डाइट में लेते हैं कि आप पानी कितना पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का अगर मिक्सन जो एक प्रॉपर अमाउंट में अगर कोई ले रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट।
2: तो बैलेंस डाइट में एक आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज़ ले रहे हैं उसमें कौन कितना फैट है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है?
3: देखिए, इतना तो पता कर पाना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक एवरेज जो एक पर्सन के लिए जो कैलोरी होती है डेली की, वो होता है 2000 किलो कैलोरी। कि अगर कोई एवरेज आदमी है 2000 किलो कैलोरी ले रहा है प्लस 60 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, दैट मीन्स कि ही इज टेकिंग बैलेंस डाइट।
2: तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि हाँ, एक लेबर क्लास का आदमी जो खेतों में काम करता है उसकी कैलोरी डिमांड ज्यादा होती है।
3: हाँ।
2: और जो कार्यालय में ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के काम
3: करते हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे जो कार्यालय में बैठे हैं, जो सिटिंग है जिनका, उनका जो है थोड़ा कम होता है, लेकिन जो सेडेंटरी है, मान लीजिए कोई रिक्शा वाले हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा कैलोरी नीड है। तो उसका जो कैलोरी, जैसे अगर आम, मैंने जैसे कहा एवरेज पर्सन के लिए 2000 है, तो वही वो एक हैवी वर्कर के लिए 2500 हो जाता है, 2600 हो जाता है, इस तरीके से होता है।
2: अच्छा, तो उसके कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कोई खास अनुपात भी होता है कि इतना परसेंट जो इस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट लेना है, इस रेशियो में प्रोटीन लेना है?

0: ऐसे कुछ
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: कुछ?
1: ऐसे भी रहता है, हम लोग बोलते हैं कि आपका जो फूड होना चाहिए दैट इज़ 60% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करवाते हैं।
0: ये जो पोषक तत्व की बहुत बात होती है कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व हमें लेना चाहिए, पोषक तत्व का क्या मतलब है?
1: पोषक तत्व मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो एक पोषक तत्व में आता है,
0: अच्छा।
1: हमारा विटामिन्स है वो पोषक तत्व हुआ, मिनरल्स है वो पोषक तत्व हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स है वो पोषक तत्व हुआ, एक गुड फैट जिसको बोलते हैं फैट हमारा पोषक तत्व हुआ।
0: अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति जो है हमारे यहाँ अक्सर जो है चावल दाल सब्जी खाता है, रात को रोटी सब्जी खाता है, बहुत मुश्किल से हुआ तो वो जो है सो कि दूध उसको मिलता है तो पी लेता है, तो क्या ये सफिशियंट है उसके लिए?
1: नहीं, अगर हम देखें तो सफिशिएंट नहीं हो पाता है उनके लिए, तो हम लोग फिर ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये बोलते हैं अगर आपको मिल्क नहीं हो पाता है तो आप जो हैं जो फोर्टिफाइड आइटम हैं जैसे कि गुड़ है जो बहुत सस्ती आती है,
0: जी, जी.
1: आप गुड़ वगैरह खाएं, आप चने वगैरह खाएं, आप सत्तू का इंटेक करें, जहाँ तक प्रोटीन का सवाल है तो हम सत्तू से भी एक एडिक्वेट प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं उसको कि आप जैसे कि अनाज में जैसे कि साबुत अनाज का आप ज़्यादा उपयोग करें, अंकुरित वगैरह ज़्यादा खाएं जो कि आपको कैल्शियम का जो अगर आप दूध नहीं भी पी पा रहे हैं तो कैल्शियम आपको उससे भी कुछ मिल सकता है।
0: मतलब जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं
1: हाँ,
0: उनके लिए सत्तू
1: हाँ,
0: चना मूंग ये सब
1: हाँ,
0: चीजें
1: ये
0: जो
1: सब,
0: है
1: हाँ,
0: गुड़ काफी
1: गुड़
0: फायदेमंद
1: काफी
0: साबित हो
1: फायदेमंद
0: सकता
1: है
0: है, लेकिन जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या है जो खरीद सकते
1: जो
0: हैं?
1: खरीद सकते हैं उनके लिए है कि आप दूध पिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, दूध खाएं, दही खाएं, अंडा वगैरह लें, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन वगैरह खाएं, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्वांटिटी फिक्स होती है, जैसे आपने कहा जो ले सकते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, जिससे कि
0: अच्छा
1: आजकल जो आप बीमारियां देख रहे हैं डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, वो कारण है इसी ओवर न्यूट्रिशन का कि वो
0: जी
1: ज़्यादा ले रहे हैं, वो बैलेंस डाइट से ज़्यादा ले रहे हैं खाना, इसलिए उनका जो है जो शुगर ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, मोटे होते जा रहे हैं वो, तो उनको भी नीड है कि हाँ वो एक अपना एक तय करें कि हाँ कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना हमको खाना है, इस तरीके से।
0: ये तो नॉन वेजिटेरियंस की बात हुई, जो वेजिटेरियन यानी शाकाहारी है वो यदि कोई चाहे कि बहुत हम रिच डाइट लें उसके लिए
1: हाँ,
0: रिच डाइट क्या
1: तो
0: हो सकता
1: उनके
0: है?
1: लिए अगर कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए है वो पनीर का इस्तेमाल करें, पनीर रोज खाएं कोई दिक्कत नहीं है, 50 ग्राम पनीर अगर ले रहे हैं तो उनका एक अच्छा उनको अमाउंट में प्रोटीन मिलता है।
0: अच्छा,
1: वेराइटी ऑफ दाल खाएं, राजमा वगैरह जो आता है, जो बीन्स वगैरह वाले जो दाल होते हैं उनको लें, मखाना वगैरह वो खा सकते हैं, मखाना रिच कैल्शियम है, तो इनको अगर हम इस तरीके से लें तो वहाँ पे जो नॉनवेज वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी।
0: फ्रूट्स के बारे में भी बातें होती हैं कि अखरोट वगैरह जो है इसका भी सेवन किया जा सकता
1: हाँ,
0: है।
1: ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट लें क्योंकि अखरोट और बादाम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा
0: बहुत
1: होता है,
0: अच्छा।
1: आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ड्राई फ्रूट्स अगर खा सके तो वो खा सकते हैं।
0: अगर किसी ने ज्यादा खा भी लिया यदि तो उसके लिए क्या कर सकता है? उसके लिए एक्सरसाइज यदि वो
1: हाँ,
0: करता
1: एक्सरसाइज
0: है
1: अगर करता है ज्यादा, अगर मान लीजिए फूड इनटेक हो गया
0: हाँ।
1: लेकिन उसका अगर कैलोरी वो बर्न करता है कि अगर वो एक्सरसाइज करता है तो बात फिर वहाँ पे इक्वल हो जाती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है।
0: यानी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरी बर्न होगी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से जो कि जानी मानी डाइटिशियन है यहाँ की। हमारी बातचीत का विषय था बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। तो आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देश गान। आइए सुनिए भजन, स्वर है समूह स्वर है।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गणपति वंदना। आइए अगला भजन, स्वर है भरत कुमार का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है अनूप जलोटा का।

जुबिन नौटियाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का, मुख्य स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काक भुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

रामचरितमानस मानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 10 बजे। भक्ति संगीत आप सुनेंगे 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन के 11 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 11:30 पर। वर्णों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा 1:15 पर। रोजगार सूचना का समय होगा 2:10 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:30 पर। प्रादेशिक संगीत आप सुना करते हैं 2:03। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला संध्या 5:00। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:00।

10 मिनट से। ग्रामीण भवन को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है 6:30 से। किसान भवन को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुना करते हैं 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:52 से। विज्ञान कार्यक्रम का समय होगा 8:15 से। युवा भारती कार्यक्रम का समय होगा 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00, इसे भी हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। यह था आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत में फिर हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसाङ्ख्यिक्याः रक्षणाय महत्त्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्ष्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्णे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति।

0: सोमवासरे राष्ट्रपतिः यु मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृता अस्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यु मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यु मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार, समस्त श्रोता लोकन का आशीषक नमस्कार।
0: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरी ओर से भी स्नेह भरा नमस्कार। आशीष जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार प्रतिभा जी। और दिन के शुरुआत अगर सुविचार से हुए तो दिन भर ऊर्जा बनल रहते।
0: बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। आज का सुविचार है, नीत श्लोक है, कहते हैं, उत्साहो श्रेष्ठ बलवान आर्य, नास्ति उत्साहात परम, स उत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। सुभाषितान में कहा गया है कि उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। उत्साह से बढ़कर व्यक्ति के लिए और कोई बल नहीं। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए अपने दिन और दिनचर्या की शुरुआत पूरी तरह से उत्साहित होकर करनी चाहिए।
1: निश्चित तौर पर हम सब अहाँ के शुरुआत में कहबो कलों की जना सुविचार के जरिए हम सब अपन दिन भर अहाँ के ऊर्जा का संचार होते रहिए। ओहिना सुविचार सेहो सह कह रहल है कि सकारात्मक रही। अगर भोर से अगर अहाँ उठे छी और सकारात्मक रहब तो दिन भर अहाँ के काज है से नीक सनक चलित रहत।
0: बिल्कुल, आसानी से आप कर पाते हैं उस काम को। उत्साह

0: पुलकित होके या फिर खुश होके यदि अपनी दिनचर्या की शुरुआत की जाती है तो बहुत ही अच्छे ढंग से, सहजता से, सरलता से हम अपने पूरे काम को कर पाते हैं।
1: और जे सब काज के सहज ढंग से सरलता से करे छथि तई में से बहुत आदमी एहन होय छथि जे इतिहास में सेहो नाम करे छथि। और कार्यक्रम में सेहो आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि ओहि पर हम सब जानकारी प्राप्त कऽ ली।
0: जानते हैं आज के दिन का इतिहास क्यों है, आज का दिन इतिहास के आईने में खास। तो आज ही के दिन अर्थात 30 मई 1826 को भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को सर नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 6 जहाजों के बेड़े के साथ तीसरी बार अमेरिका की यात्रा के लिए 30 मई 1498 को रवाना हुआ था।
1: तो ये आजुक दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रही। और निश्चित तौर पर इतिहास से सीख लो कि हम सब अपन वर्तमान के किछ सहेज सकै छी और भविष्य बना सकै छी।
0: बिल्कुल,
1: तो हमरा सब के सीख लेबाक चाही और सीखैत हरदम आगू बढ़बाक चाही। ओहिना कार्यक्रम में सेहो आगू बढ़े छी, अपने सब की मैथिली गीत सुनबै छी।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत और भक्ति भावना से परिपूर्ण। हम लोग जब भक्ति भावना के साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और पूरे उत्साहित होकर और समर्पित होकर, समर्पण हमारे ईश्वर के सामने सबसे पहले कि हम जो काम करेंगे या करने वाले हैं आज के दिन में, आज का दिन शुभ हो हमारा, बिल्कुल
1: निश्चित गप छे। और दिन अगर शुभ होइत अछि तऽ अहाँके किछु मोन सेहो प्रसन्न होइत रहैत अछि, आओर मोन प्रसन्न रहैत अछि तऽ अहाँ जे कोनो काज करै छी सेहोमे सफल होइ छी।
0: बिल्कुल,
1: ओना एखुनका जे बदलैत मौसम अछि ताहिमे कनि सावधान रहनाइ सेहो बहुत बेसी जरूरी भऽ जाइत अछि। तुरंतमे ठंडा देखै छी, आंधी तूफान आबऽ लगैए आओर ओहि सबसँ बचै छी तऽ फेर गर्मी सेहो शुरू भऽ जाइत अछि, तऽ एहन समयमे ध्यान रखनाइ बहुत बेसी जरूरी भऽ जाइत अछि।
0: निश्चित तौर पर देखिए ना, कभी बारिश तेज होने से ठंडक का एहसास होता है, कभी इतनी तेज धूप निकलती है कि हम सभी परेशान हो जाते हैं, खास करके जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं वो। तो निश्चित रूप से ध्यान देने की बात है कि धूप के समय में कोई बाहर ना निकले, बहुत ही आवश्यक कार्य है तो हम सभी पहले ही करके रख लें, या जो ऐसे लोग हैं जो जा सकते हैं उन पर ज़्यादा असर ना हो, पानी वानी पी के निकले, तो इस तरह से हो सकता है बच्चे और बुजुर्ग खास करके धूप में बाहर नहीं निकले, ये सब चीज़ ध्यान देने की बात है। स्वास्थ्य का ध्यान तो निश्चित रूप से रखना होता है, खास करके बदलते मौसम में, और ये जो गर्मी का जो अभी मौसम है, गर्मी अपने चरम सीमा पर है, लेकिन देखिए ना तेज आंधी बारिश ये सब बीच में ठंडक का भी एहसास करा रहा है और फिर गर्मी तेज धूप के कारण, तो ऐसे में सर्दी खांसी का होना एकदम कह सकते हैं कि लाजमी है, कह सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रभावित करता है ये हमारे स्वास्थ्य को। तो सर्दी खांसी बुखार या फिर लू लगना इस मौसम का जो है कि गर्मी के कारण, तो जब कभी इस तरह से कभी आवश्यक कार्य से बाहर निकलनी है तो पानी पी के, छाता लेके, या फिर आप बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट के नीचे जो सूती कपड़े हैं वो लगा के, बहुत कुछ ध्यान देने योग्य बात है, पानी अपने पास रखें, लेकिन धूप में बहुत देर तक निकलने के बाद पानी तुरंत ना पिए, अपने आप को थोड़ी सी राहत देने के बाद, ठंडक देने के बाद तब पानी पिए, ये सब चीज़ ध्यान देने की बात है।
1: और खास करके अगर बच्चा सबके देखी, देखो बहुत ठाम अगर गर्मी छुट्टी भऽ गेल और जतय छै सेहो होइवला अछि, तऽ एहि समयमे बच्चा सबके कनि ध्यान रखबाक चाही गार्जियनके कि ओ बाहर रौदमे अहाँके नहि कूदै लए जायत, खेलाइ लए जायत, खेलाइ लए जेबो करत जखन रौद कम भऽ जायत ताहि कालमे जायत, आओर अगर हुनका बाहर जा रहल छथि तऽ हुनका रोक लगायल जाए जाहिसँ कि हुनका अहाँके बीमारी नहि पकड़ पाबए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और गर्मी की छुट्टी की बात की है आपने, तो बच्चे तो स्कूल के बाद घर में जैसे ही रहना शुरू करते हैं छुट्टियों में, तो मनमौजी लगता है कि अपने मन से अभी निकल जाते हैं खेलने के लिए, तो 12 बजे से लेके और 4-5 बजे तक तो निश्चित रूप से घर से बाहर खेलने नहीं देना है बच्चों को, इसके बाद 5 बजे के बाद हम सभी कहते हैं कि बच्चे बाहर खेल सकते हैं, क्योंकि धूप का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। घर में भी जो रहते हैं तो भी

0: ध्यान देना है कि ठंडक कैसे हमारे बच्चे तक पहुंच पाए, खासकर के बच्चे जो छोटे बच्चे जो हैं आशीष जी, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनकी जो लक्षण से हम सभी समझ पाते हैं कि क्या दिक्कत हुआ है इसको, तो उसके लिए जो पंखे आदि का कूलर है, या फिर जरूरी नहीं है कि हर जगह एसी ही हो, लेकिन बच्चे ठंड में परेशान कैसे नहीं, समय पर उसको स्नान कराना ठंडे पानी से, या फिर कपड़े, खास करके ये ध्यान देने की बात है कि जो सूती कपड़े हैं, जो एकदम हल्का सा कपड़ा है, जो उसमें बच्चे को गर्मी का एहसास ना हो, तो उस तरह के कपड़े हम पहनाते हैं अपने बच्चे को, और नहाने पे बहुत अधिक ध्यान देते हैं, ठंडा पानी से अच्छे से नहाने पे ध्यान देते हैं। और ध्यान देने की जहाँ तक बात है, तो कार्यक्रम में पहले अब ध्यान देते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को हम लेकर आते हैं हर दिन हालचाल के माध्यम से। तो प्रस्तुत कर रहे हैं आशीष कुमार सिंह, सुनिए इनसे हालचाल, फिर करेंगे बातचीत आगे।
1: धन्यवाद प्रतिभा जी। आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संघ आशीष सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार के अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति के बैसार आयोजित कैल गेल। बैसार में सक्षम प्राधिकार के दिश से निर्देश देल गेल कि 10 जून धरि जिला अंतर्गत सबटा ब्लैक स्पॉट्स के अनिवार्य रूप से हटबे के दिशा में काज कैल जाए, और एहि के लेल तकनीकी विभाग के सेहो लगायल जाए, और शहर के अंतर्गत ट्रैफिक सिग्नल पर सड़क सुरक्षा नियम के पालन हो, एहि के लेल यातायात पुलिस उपाधीक्षक के आवश्यक कार्रवाई करे के सेहो दिशा निर्देश देल गेलन। बैसार में डीएम बरियाही से बनगांव सड़क के समुचित संधारण के सेहो निर्देश देलत, और संगे रेन कट्स और ढलान नाली के से अविलंब ठीक करे के सेहो निर्देश देलत। सहरसा में बरियाही ब्रह्म स्थान से बनगांव बाईपास सड़क के चौड़ीकरण के काज शुरू भ गेल अछि। ई सड़क लगभग 6.5 करोड़ रुपया के लागत से बनि रहल अछि। एहिसँ बरियाही बाजार पर आवागमन के बोझ से घटत। नगर निगम सहरसा संगे जिला के अन्य निकाय के लेल 30 मई के सशक्त कमिटी के सदस्य सब के चुनाव कयल जायत। आब पार्षद सब के गुप्त मतदान से बहुमत के आधार पर समिति के गठन होयत। बिहार के स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त राज्य बनबे के लेल शिक्षा विभाग प्लास्टिक मुक्त विद्यालय प्लास्टिक मुक्त बिहार विशेष अभियान शुरू कयने छथि। गर्मी के छुट्टी के बाद स्कूल सब में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाओल जायत। किसान रजिस्ट्री अभियान में सुपौल जिला के प्रदर्शन लगातार नीक रह रहल अछि। राज्य सरकार के 29 मई के रिपोर्ट के अनुसार जिला में एखन धरि 1,70,758 किसान के रजिस्ट्री भऽ चुकल छनि। पीएम किसान योजना के 2,72,352 लाभार्थी के मुकाबला में ई उपलब्धि 62.7% धरि पहुंच चुकल अछि। सुपौल में 74 समेकित स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा सब प्रदान कयल जायत। एहि में स्थानीय प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ता सहयोग करतात। मौसम में लगातार बदलाव के कारण लोग सब के सेहत पर सेहो असर पड़ रहल छनि। उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहल छथि। डॉक्टर सब के अनुसार मौसम में बदलाव और खान पान के लापरवाही एकर मुख्य कारण अछि। मधुबनी नगर निगम शहर के जलापूर्ति व्यवस्था के दुरुस्त करे के लेल व्यापक स्तर पर मरम्मत और रख रखाव करे के दिशा में पहल शुरू कऽ चुकल छथि। नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती एहि के लेल निर्देश जारी कयलथि। एकर अंतर्गत शहर के 42 योजना के क्रियान्वयन के लेल निविदा के प्रक्रिया शुरू कऽ देल गेल अछि, जे शहर के विभिन्न 42 वार्ड में पूरा कयल जायत। सबटा योजना जलापूर्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न वार्ड में मेजर मेंटेनेंस कार्य से संबंधित अछि। निविदा निर्देश के अनुसार प्रीबिड बैठक 8 जून के नगर निगम कार्यालय में आयोजित होयत। संवेदक सब 13 जून धरि ऑनलाइन निविदा जमा कऽ सकै छथि आ 15 जून के निविदा खोलल जायत। अधिकांश जे एहिमे से योजना अछि तकरा 2 महीना के भीतर पूरा करे के लक्ष्य राखल गेल अछि। मधुबनी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6 जून के किसान आ ग्रामीण उद्यमी सब के लेल कृषि ऋण आउटरीच कैंप आयोजित करत। एहि कैंप में विभिन्न ऋण योजना के जानकारी देल जायत और ऋण स्वीकृति के संगे संगे वितरण सेहो कयल जायत। दलसिंहसराय नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सब के निर्वाचन के प्रशासनिक तैयारी पूरा

0: कऽ लेल गेल अछि। निर्वाचन कार्य आइ होयत, एहि मे एसडीओ किशन कुमार के अध्यक्षता मे समीक्षा बैसार भेल। सीतामढ़ी जिला के सरकारी स्कूल में गर्मी छुट्टी के दौरान प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधान मौलवी मुख्यालय नहीं छोड़ सकै छथि। एकरा लऽ कऽ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कयलथि है। एहि मे कहल गेल अछि कि 1 जून से 20 जून धरि जिला के राजकीयकृत परियोजना उत्क्रमित प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सब में गर्मी के छुट्टी रहत। एहि आदेशक अनुसार संस्कृत, उर्दू और मदरसा विद्यालय में सेहो ई लागू रहत। डीओ कार्यालय सबटा प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधान मौलवी के अवकाश अवधि में मुख्यालय में रहकर निर्देश देलखिन हैं। संगे सब आदमी के मोबाइल फोन सेहो चालू रखे के लेल कहल गेल अछि, जैसे विभाग से भेटे वाला आदेश के ससमय पालन कयल जा सके। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
1: अरे हमार बाबूजी के

0: और प्रधान मोदी के अवकाश अवधि में मुख्यालय में रहे के निर्देश दिलखिन है। संगे सब आदमी के मोबाइल फोन से हो चालू रखे के लेल कहल गेल अछि, जैसे विभाग से भेटे वाला आदेश के ससमय पालन कयल जा सके। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा,
2: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। सुरसंड थाना पुलिस दिस से शुक्र के नगर स्थित सरयू उच्च विद्यालय में छात्र छात्रा सब के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। अभियान के अंतर्गत बाल विवाह, साइबर अपराध, सूखा नशा, मानव तस्करी आ सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी घुसपैठ सनक समस्या सब के बचाव के लेल विस्तृत जानकारी देल गेलन। खम्हार बभन गामा के हसनपुर बागर चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के दोसर क्वार्टर फाइनल में आशीष 11 खगड़िया के 3 रन से हरा दिलत। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौनी के दिस से बिहट नगर परिषद के जेमरा में आई मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हैत। पीएससी प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार और हेल्थ मैनेजर संजय कुमार बतौलत कि 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत बरौनी अंचल के पंचायत आ गाम सब में बिहट नगर परिषद क्षेत्र में हेल्थ कैंप के जरिए लोग सब के स्वास्थ्य परीक्षण क के जरूरी दवा देल जा रहल छन। टीबी के मरीज सब के पहचान क के उनका मेडिकल किट देल जा रहल छन। गर्भाशय कैंसर से बचाव के लेल बालिका सब के एचपीवी टीकाकरण कयल जा रहल छन। शिविर में आन बहुत तरह के जांच सेहो कयल जायत अछि। बिहार राज्य किसान सभा के 38वां जिला सम्मेलन 31 मई सँ 1 जून धरि गोपी कृष्ण संस्कृत उच्च विद्यालय बागवाड़ा में हैत। एहिमे 250 प्रतिनिधि शामिल हेतत। सहरसा में डीएम दीपेश कुमार आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन कयलत। ई केंद्र पर आधार नामांकन, मोबाइल नंबर अपडेट आ बायोमेट्रिक सेवा उपलब्ध रहत। बूढ़, दिव्यांग आ गर्भवती महिला सब के प्राथमिकता देल जतन। कोसी सीमांचल क्षेत्र के लेल गणपतगंज सँ परवाहा धरि सड़क निर्माण परियोजना के स्वीकृति भेटल। एहि परियोजना पर 703.95 करोड़ रुपया खर्च होयत। एकर लंबाई 47.432 किलोमीटर होयत। प्रतापगंज में शुक्र दिन सखी सहायता डेस्क कार्यक्रम के आयोजन भेल। एहि कार्यक्रम के उद्देश्य महिला आ किशोरी सबके हिंसा आ उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान केनाइ अछि। नगर भवन मधुबनी में काल शुक्र दिन 2 दिनक मधुबनी रंग महोत्सव 2026 के शुरुआत भेल। दरभंगा में 36 पंचायत के लेल सहयोग शिविर के आयोजन 2 जून के हैत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम सँ स्नातक सत्र 2026-30 आ स्नातकोत्तर सत्र 2026-28 के नामांकन के प्रक्रिया पुनः शुरू भ गेल अछि। तकनीकी कारण से नामांकन प्रक्रिया बाधित छल। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: एक छोट सनक व्यावसायिक विश्रामक बाद एक बेर फिर से स्वागत है अहाँ का अपन कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। आजुक नमस्कार मिथिला लोक उपस्थित छी हम आशीष
5: और मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। आशीष जी, मौसम की जानकारी साझा करते हैं अपने श्रोताओं के साथ। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 30 मई से 3 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार के जिलों में वर्षा की संभावना बने रहने की संभावना है। उसके बाद मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 48 घंटों में जिस क्षेत्र में वर्षा होगी हवा की रफ्तार 20 से

0: 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उसके बाद हवा की रफ्तार कम होने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में 35 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है।
1: निश्चित गप छै और जेना एखन अपना सब चर्चा करैत रही प्रतिभा जी कि लगातार मौसम बदलि रहल अछि और ई मौसम के जानकारी से सेहो हमरा सबके जानकारी भेट रहल अछि कि मौसम बदलि रहल अछि। ई बदलैत मौसम में अगर हम अहाँ सफर करै छी तऽ सफर से पहिले जानकारी जरूर प्राप्त कऽ ली कि जे चीज से हमरा सबके जेबाक अछि ओ अपन सौ समय अछि वा नहि अछि, क्याकि बदलैत मौसम में खाली असर हमर सबके स्वास्थ्य पर नहि पड़ैत अछि, यातायात पर सेहो एकर असर देखल जाइत अछि और खास कऽ के एखुनका समय में बिजली के
0: आंधी तूफान, हाँ आकाशीय बिजली आंधी तूफान ये सब का जो समय है तो खास करके हवाई सफर जो है वो प्रभावित होने की संभावना होती है। तो हम सभी पहले ही पता कर लेते हैं कि कब निकलना है, क्या समय से वो हमारा विमान उड़ने वाला है कि नहीं, तो इस तरह से वो कर लेते हैं। और आपने कहा कि बिजली बाधित होती है तो तूफान के कारण बहुत जगह पेड़ गिर जाते हैं बहुत जगह, हाँ तो इस तरह से बिजली बाधित होती है तो बहुत सारा कुछ कहते हैं कि कह सकते हैं ठप हो जाता है हर काम। करेंगे बातचीत आगे आशीष जी हमसे भी लेते हैं
1: छोट सनक व्यवसायिक विश्राम।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है एक किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: हम सभी व्यावसायिक विश्राम से पहले कहना के मौसम और जानकारी लेते रहिए और संगे यातायात और लोकल गप सब सेहो करते रहिए। और ओहिसे पहले चर्चा कतौ न कतौ मौसम से संबंधित अछि कि एखुनका जे मौसम अछि ताहिमे बुजुर्ग यानी बूढ़ बुजुर्ग जे छथि तिनका सबके और बच्चा के ध्यान रखने बेसी जरूरी भऽ जाइत अछि।
0: निश्चित रूप से, और बच्चे जो हैं जो बहुत अधिक अपना ध्यान तो रख नहीं पाते हैं, ध्यान रखने की बात ही छोड़िए वो कह भी नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है, वो खेलने में बस लगे रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी वहाँ पे और भी अधिक बढ़ जाती है कि बच्चे पानी समय पर पी रहे हैं कि नहीं। और इस मौसम में खास करके सभी के लिए ज़रूरी है कि खाने पीने की बात करें तो खीरा ककड़ी संतरा दही छाछ मौसमी फल तरबूज है खरबूजा है इन सब चीज़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है सभी के लिए। वहीं यदि पेय पदार्थ की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स जूस आजकल के बच्चे क्या बड़े भी पसंद करने लगे हैं करते हैं, तो इन सब चीज़ों से परहेज हम यदि करते हैं तो गर्मी का असर जो है वो कम होता है। इसके जगह पर हम सत्तू छाछ नारियल पानी ये सब चीज़ का उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए। तो ज़रूरी है धूप से बचाओ, खास करके धूप से बचाओ, खेलने वाले जो बच्चे हैं बाहर धूप में ना जाए, लू लगने का खतरा होता है। और लू लगना देखिए बच्चे यदि सुस्त हो जाए शांत हो जाए, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे यदि सुस्त हो गए हैं उन्हें बुखार है 102 डिग्री बुखार है या फिर वो उल्टी करने लगे हैं एकदम शांत सा हो गए हैं तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए देर ना करते हुए। तो बहुत कुछ है, दस्त आने की भी दिक्कत हो जाती है गर्मी से उल्टी आने लगती है, तो ये सब चीज़ बहुत ही ध्यान देने की बात है कि हम अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से इस गर्मी के मौसम में रख सकते हैं।
1: और कार्यक्रम में सेहो हमरा सबके ख्याल रखे के रहिए कि समय पालन के
0: बिल्कुल
1: समय के संगे चले के रहिए और समय के संगे अगर चली तखन आप समय कह रहल अछि कि अपने सबके बीच हम सब एकटा गीत आनी।
0: आइए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: सही कहल गेल अछि कि अगर किछु जिन्दगीमे अगर अपन सनक लोक भेट जाइए तऽ जिन्दगी बहुत नीक भऽ जाइत अछि, तकर बाद जिन्दगीमे आन चीजके काज नहि पड़ैत अछि। तहिना स्वास्थ्यके दृष्टिसँ अगर देखल जाए कि हम अहाँ अगर कनि सतर्क रहै छी तऽ स्वास्थ्य हमर अहाँके नीक रहत, जाहिसँ परिवार सेहो खुशहाल रहैत अछि।
1: बिल्कुल, आओर वही नहीं, आपने अच्छे लोगों के मिलने की बात की है तो कितना बार देखा जाता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रक्त की खून की बहुत अधिक आवश्यकता है, वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और उस समय यदि कोई रक्तदान करने वाले मिल जाते हैं, कोई डोनर मिल जाते हैं, तो उनकी जान को तुरंत बचाया जा सकता है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारे परिवार में हो सकते हैं। ये रक्तदान जो है, दान शब्द ही आशीष जी अपने आप में बहुत ही एक उदारवादी भावना झलक जाती है दान शब्द बोलते ही, पर ये दान अनेक तरह के होते हैं, जैसे कि हम सभी अन्न दान करते हैं, रुपए पैसे की दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, पर इन सब में बढ़कर जो है वो अंग दान है और उसमें रक्तदान है उसमें भी। तो रक्तदान बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है, जो मरते हुए को बचाने के लिए, खास करके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी उनकी ऑपरेशन हुई है या वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, महिलाएं जो बीमारियों से जूझ रही हैं, तो उस समय आवश्यकता होती है उन्हें तुरंत जो खून देने की, तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे आते हैं, सामने आते हैं और दान करते हैं। रक्तदान में कुछ मिथक भी है, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं यदि रक्तदान करता हूँ या करती हूँ तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो 3 महीने में एक बार पुरुष कर सकते हैं रक्तदान और महिलाएं 4 महीने में एक बार कर सकती हैं, यानी कि साल में 4 बार पुरुष जो हैं वो रक्तदान कर सकते हैं और महिलाएं 3 बार कर सकती हैं। बस उसमें कुछ है कि क्या कंडीशन है, उनके लिए कुछ देखना होता है। हाँ,
0: निश्चित गप छै, और खास कऽ के किछु 350 से 450 मिलीलीटर जे रक्त देनाइ शरीरके लेल एकदम सुरक्षित अछि। ताहि दुआरे ई कोनो अगर भ्रम मनमे हुए तऽ भ्रम अहाँ निकालि कऽ राखि लिअ। आओर कए बेर लोक सब कहै छनि कि संक्रमणके डर, तऽ अगर कतौ अहाँ रक्तदानमे जाइ छी तऽ अहाँ देखबै डिस्पोजेबल सुई आओर ओहिसँ जुड़ल उपकरण सबके उपयोग कयल जाइत अछि, जे ओकर तुरंत बाद एक बेर उपयोग होइत अछि ओकरा फेर हटा देल जाइ छै, तऽ संक्रमणके सेहो कोनो तरहके सम्भावना या कोनो तरहके डर नहि रहैत अछि। ताहि दुआरे एकटा आओर लोक सबके डर रहै छनि कि रक्तदान करबै, कहीं अगर खून निकलि गेल तऽ हम कमजोरे नहि भऽ जाए, तऽ एहन कोनो गप नहि छै, या फेर कोनो बीमारी नहि लागि जाए। तऽ अगर अहाँ खून दऽ रहल छी तऽ ई कोनो तरीकासँ अहाँके कमजोरीके लक्षण नहि अछि, अहाँ कमजोर नहि होयब। 350 से जेना हमसब पहिने कहलहुँ 350 से 450 मिलीलीटर जे खून देनाइ शरीरके लेल सुरक्षित छै।
1: बिल्कुल, और इसमें आपका खुद का भी फायदा होता है, हेल्थ चेकअप हो जाता है फ्री में, और जो बीपी है, हीमोग्लोबिन है, हेपेटाइटिस है, एचआईवी, मलेरिया, ये सब टेस्ट कराने के बाद ही तो रक्तदान लिया जाता है। तो ये सब जो चेकअप आपका हो जा रहा है, फिर जो नया खून बनता है आशीष जी, पुराने जो आरबीसी निकल जाएंगी तो बोन मैरो जो नई फ्रेश कोशिकाएं बनाएगा, नया खून बनता है, कैलोरी बर्न करता है रक्तदान होने से। एक बार डोनेट करने पर 650 कैलोरी बर्न होती है, ऐसा चिकित्सक कहते हैं। और मेंटल सुकून, किसी की जान बचाई है आपने तो ये सोच के मेंटल सुकून हमें प्राप्त होता है, ये खुशी तो कह सकते हैं कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। और उम्र की यदि बात करें, कौन कर सकते हैं रक्तदान, तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं रक्तदान, जिनका वजन कम से कम 45 किलो निश्चित रूप से हो और उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 होनी चाहिए और बीपी नॉर्मल हो और एचआईवी, हेपेटाइटिस, कैंसर, हार्ट पेशेंट, ये सब चीज़ उनमें ना हो, ये ना हो। और गर्भवती महिलाएं पीरियड के समय या फिर जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, ऐसी महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। और रक्तदान जो है, कमजोरी इससे नहीं आता है, आपने पहले ही कहा है, और मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ये सब चीज़ भ्रम है। इस भ्रम

0: हमें त्यागना है, कहते हैं रक्तदान महादान। तो हम सभी को जब कभी भी मौका लगे तो रक्तदान करनी चाहिए। और रक्तदान के लिए कुछ जो नियम बताए गए हैं कि अगले दिन आपको रक्तदान करना है तो रात में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, भरपेट भोजन करनी चाहिए और पानी खूब पीते रहना चाहिए, और बाद में रक्तदान के बाद 15 मिनट बाद जूस लेना है या फिर जो ताकत भरी जो कुछ छेना वगैरह वो सब चीज़ खाना होता है। रक्तदान करने के लिए बहुत बार ये भी देखा जाता है कहाँ करें हम रक्तदान। बहुत सारे व्यक्ति उत्सुक रहते हैं रक्तदान करने के लिए लेकिन उन्हें पता नहीं है, तो सरकारी ब्लड बैंक हर जिला अस्पताल में जो सरकारी ब्लड बैंक है वहाँ पे आप रक्तदान कर सकते हैं, रेड क्रॉस में, और कैंप जगह जगह पे लगता है आरसीसी रक्तदान के लिए। तो जैसे कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी, हमारे आकाशवाणी केंद्र में भी कितने बार कैंप लगाया जा चुका है। तो इस तरह से कैंप में जाके भी आप रक्तदान कर सकते हैं।
1: और कतो न कतो अगर अहाँ रक्तदान करै छी तऽ कोनो आदमी के जीवन बचा रहल छियन। अहाँ के एक यूनिट जे छै, अहाँ जे रक्त अगर के छै खून के दान करै छी तऽ 3 लोग के जान बचाल जा सकै
0: छै।
1: और सबसे पैघ बात छै कि कोनो अगर आपातकालीन स्थिति में जेना कि भूकंप अबैत अछि, बाढ़ अबैत अछि या कोनो एहन प्राकृतिक आपदा अबैत अछि जाहिमे लोक सब घायल भऽ जाइ छथि या फिर सड़क दुर्घटना में लोग घायल भऽ जाइ छथि, तऽ ओहि काल में ब्लड बैंक के स्टॉक में जे अहाँ जे रक्तदान केने रही छी वह स्टॉक हुनका लेल जीवनदायिनी बनै छनि। वह एक यूनिट ब्लड हुनकर जिंदगी बचा दै छनि, हुनकर जिंदगी के अहाँके आगू राखे छन बढ़े ले। ताहि दुआरे कतौ न कतौ अहाँ बहुत नीक काज कऽ रहल छी अगर रक्तदान कऽ रहल छी, तऽ एहिसँ नीक अहाँके काज नहि भऽ सकैत अछि। ताहि दुआरे कहल जाइ छै कि रक्तदान महादान।
0: ऐसे भी अंगदान का विशिष्ट महत्व होता है। कितने बार लोगों का किडनी, लीवर ये सब जो खराब होने के बाद, या नेत्रदान खास करके विशिष्ट महत्व, तो लेकिन रक्तदान जो है, हमने कहा कि पहले ही कि तुरंत अचानक से सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो गए हैं, या आपने कहा कि अभी भूकंप आदि में या किसी प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे लोग एक साथ घायल हो जाते हैं और उन्हें आवश्यकता होती है रक्त की, तो इसके लिए पहले से भी व्यवस्था जो सरकारी जो ब्लड बैंक है उसमें जो रखा जाता है करके, तो उसके लिए हम सभी कर सकते हैं रक्तदान पहले से भी कि हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है वो किसी की जान बचा सके। इसके लिए हमें पहले से भी तैयार रहनी होती है। और ये रक्तदान बहुत ही पुण्य का काम है। हम सभी हर समय इसे जो है जानते हैं पर मानते भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने में थोड़ी सी हिचकिचाहट है। तो हम तो यही कहेंगे अपने सुनने वालों से कि रक्तदान निश्चित रूप से करनी चाहिए हर किसी को।
1: निश्चित गप छै, ताहि पर हम सब आब आगू अगर कतौ मौका भेटत रक्तदान निश्चित करब और दोसर आदमी के सेहो अहाँके ओहिके लेल प्रेरित करबनि।
0: निश्चित। और देखिए नासी जी, एक बीमारी होता है थैलेसीमिया, कैंसर के बच्चे प्रभावित होते हैं उससे। उसमें क्या होता है कि बच्चे को हर 15 दिन पर खून चढ़ाना होता है वरना उसकी जान को खतरा है, और हमारे देश में एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो रक्तदान करने से जो ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी नहीं होती है रहता है, तो उसे उस बच्चे का जो है जान बचाया जा सकता है और बचाया जा रहा है। तो इसलिए हम सभी ये सोचें, ये ठानें कि जब कभी भी आवश्यकता हो या मौका मिले, मतलब, और नहीं तो फिर ऐसे भी हम पता करके, जैसे कि हमने कहा कि सरकारी अस्पताल में जाके, तो हम सभी रक्तदान अवश्य करें।
1: निश्चित तौर पर इपर हम सब आगू आप ध्यान रखब और कतो मौका लागत ते निश्चित तौर पर रक्तदान करबे करब। अब समसामयिक के सेहो चर्चा कऽ ली। एखन जे बेमौसम के बरसात भऽ रहल अछि ताहिसँ किछु बहुत लोक सब के आफत एलनि हँ, और ताहिके लेल अहाँके बिहार के मुख्यमंत्री कहलखिन कि फसल क्षति के सर्वे कऽ के किसान सबके जल्दी राहत देल जतन, और पूर्व क्षेत्र में सरकारी बस सबके किराया 15% तक बढ़ गेल अछि। और गप करी तो बिहार में आब सूक्ष्म और लघु उद्योग के बढ़ावा दे के लेल नीति जल्द बनाओल जायत, और निजी विद्यालय सबके 1 जुलाई से सघन जांच अभियान चलाओल जायत, और दाखिल खारिज से संबंधित एक समाचार जे सबके जननाय बेसी जरूरी भऽ जाइत अछि क्योंकि लोक सबके जीवन से जुड़ल खबर अछि। दाखिल खारिज जे से तकर लंबित 3 लाख

0: का आवेदन 15 दिन में निपटायल जाए तो ये एक निक खबर है कहलो हाँ
1: जी बिल्कुल राहत देने वाली खबर हाँ
0: तो अब हमरा सबके जे समय है से धीरे धीरे अंत के दिस जा रहल है तो ये समय के क्या ने फिर उपयोग करी अपने सबके एक गीत
1: और कहते हैं अंत भला तो सब भला तो चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत

0: गीत सेहो कहि रहल अछि आ कहीं दूर चले हम मुदा अपने सबके मोन से कतौ दूर हम सब नहीं भऽ सकै छी और देखियो आप कतेक लग भऽ गेलहुँ हँ कि देश विदेश में रहिकऽ सेहो न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से अपने सब जुड़ल रहि सकै छी हमरा सबके संगे तऽ और जे दूरी अछि से घटि गेल अछि मुदा कार्यक्रम के लिहाज से देखी समय के हिसाब से देखी तो ये गीत एखन एकदम सार्थक भऽ रहल अछि और हमरा सबके कहि रहल अछि आ कहीं दूर चले जाए हम
1: और इस कार्यक्रम से आज के अंक के से विदा लेने का समय हो गया है तो आज के संग से प्रतिभा प्रीति को
0: और आशीष के दिया विदा
1: नमस्कार मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न

0: बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
4: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी

0: अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार झारखंड बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rain, fall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
4: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
2: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the

0: Politics as well as politics in Trump camp and among Iran hardliners means conflict can restart after a few months. And finally, demand for gold turning cold on steep duty hike. Under that,
1: Economic Times says that gold sales have fallen 70% on muted customer sentiment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
2: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asked oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से मां और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात मगरबी एशिया महाजराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खासतौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
4: आदाद और शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली से माही में मिलने वाली जच्ची के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में ख्वातीन के हमला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख्वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियार के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। ये भी कहा गया है कि जिन ख्वातीन

0: ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है उनकी तादाद तकरीबन दो गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधी मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तेआती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रंजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सहपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणी अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान

0: का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इस दौरान मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है, जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम दो नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जरी सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्मी इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन आज 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से होगा प्रभावी।

0: और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की होगी जांच, 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी बारिश के कारण सब्जी, लीची और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। गया और सिवान में ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान के सिसवन में सबसे अधिक 135.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गोपालगंज के फोरे में 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच विभाग ने आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 30 मई दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के अनेक स्थानों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गरज बिजली गिरने की संभावना है। बांका और भागलपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। प्रदेश में जून महीने के दौरान सामान्य से कम बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी मॉनसून बुलेटिन में कहा गया है कि जून से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में मॉनसून के आगमन में भी 1 सप्ताह का विलंब हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज अपने 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ओंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की है। बढ़ावा किराया 1 जून से प्रभावी होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
3: परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15%, 100 किलोमीटर तक के लिए 14% और 150 किलोमीटर तक के लिए बस किराए में 13% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 12%, 250 किलोमीटर तक के लिए 11% और 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 10% किराए में वृद्धि हुई है। साधारण बस सेवा में 50 किलोमीटर तक यात्रा करने पर अब प्रति किलोमीटर 1.73 रुपए किराया देना होगा। पहले यह दर 1.50 रुपए थी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर परिवहन विभाग ने सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के मठ और मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए विशेष सेल बनाकर अभियान चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये

0: फैसला किया गया। बैठक में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही समन्वित तंत्र विकसित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन भी मौजूद थे। सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए सहयोग कोषांग का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह को नोडल पदाधिकारी और कोषांग प्रभारी बनाया गया है। सहयोग शिविर में आने वाले आवेदनों की मॉनिटरिंग, समन्वय और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार के कर्मियों के कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़ने पर उनके चिकित्सा भत्ता में कटौती होगी। ऐसे कर्मियों को प्रतिमाह 10% ही चिकित्सा भत्ता मिलेगा। वहीं पेंशन भोगियों को इस योजना से जुड़ने पर एक माह की पेंशन राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग के परामर्श के बाद जारी की जाएगी। दरभंगा के तोनार में मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 27,44,00,000 रुपए की लागत आएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जांच कराने का फैसला किया है। यह जांच अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा। एक महीने तक चलने वाले अभियान के तहत विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, नामांकन, छात्र सुविधाओं और अन्य निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम और बच्चों की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अनुपालन की भी जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा की कई समितियों का पुनर्गठन किया है। पूर्व मंत्री मंगल पांडे को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति तथा कृषि उद्योग विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू को आचार समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। तेलंगाना विधानमंडल के पदाधिकारियों का दल अध्ययन दौरे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद पहुंचा। दल ने दोनों सदनों की कार्यप्रणाली समझने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही इस दल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। किशनगंज के पेठिया प्रखंड स्थित मिर्जापुर गांव से एक युवक को हिरासत में लेकर

0: उससे लंबी पूछताछ भी की गई, हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेका बिगा सिरसी टाल में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 6 के पास पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के बरबीघा से 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से रुपए ठगते थे। जमुई जिले के चरखा पत्थर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पुलिस और एसएसबी ने सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। शिवहर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बिट्टू कुमार को 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से 4 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। सभी बच्चों की उम्र 11 से 15 वर्ष के बीच बताई जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोतिहारी शाखा द्वारा 6 जून को मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया, राज्य के 8 जिलों में 18 की मौत, कई झुलसे। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में आंधी पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह पेड़ गिरे, फसलों को भी नुकसान। दैनिक जागरण लिखता है, बस का सफर हुआ महंगा, 10 से 15% तक बढ़ा किराया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राष्ट्रपति से मिले मुख्यमंत्री, तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस जारी। आज अखबार ने लिखा है, वैभव पर भारी पड़ा गिल, गुजरात तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से होगा प्रभावी। और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की होगी जांच, 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आई।

0: ये और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, जो याद न आए भूल के फिर ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ऐ अहले जमाना कदर।

0: 8 जनवरी 1846 ईस्वी को पटना सिटी के मोहल्ला पूरब दरवाजा में आंखें खोली, एक ऐसे अदबी माहौल में जहां शेर व कसायद के नापाक दफ्तरों को जलाकर राख कर देने की बात हो रही थी। उनकी शायरी ने पाकीजगी और लताफत के वो नमूने पेश किए जिन्होंने अहले ज़ौक से दादो तहसीन का नजराना हासिल किया और अपने अहद के मशाहीर अदब से मेयार व वक़ार की सनद लेकर शोहरत आम और बकाए दवाम के दरबार में अपनी जगह बना ली। उनका ये दावा आज भी अहले नज़र को दावत निगाह दे रहा है कि मेरा दीवान तो यसरब है जहाने पाकबाजी का। और कहते हैं शेर किसे बज़्म पे खुल जाएगा, शाद आया न कहो हाफिज़े शीराज़ आया।
1: इसमें शक नहीं

0: मेरा दीवान तो यसरब है जहाने पाकबाजी का। और कहते हैं शेर किसे बज़्म पे खुल जाएगा, शाद आया न कहो हाफिज़े शीराज़ आया।
1: इसमें शक नहीं कि दबिस्तान लखनऊ की गलत और बेजा तकलीद के सबब उर्दू गजल मुआमला बंदी और हवाओ होश के मजामिन बयान करके यहाँ तक रुस्वा हो चुकी थी कि बकौल शख्स शोरफा उर्दू शायरों की दीवान अपने घरों में रखने से कतराने लगे थे। ऐसे में शाद ने इश्क मजाजी और इश्क हकीकी शोखी और मतानत के इंतजाज का एक ऐसा नमूना उर्दू गजल में पेश किया जिसे कलाम शाद के पहले मुरक्तिब हमीद अजीमाबादी ने मैं खाना इल्हाम का नाम दिया। आज भी ये कलाम उतना ही दरक्षा है जितना कल था।
0: शाद के वालिद का नाम सैयद इजहार हुसैन उर्फ सैयद अब्बास मिर्जा था और वालदा का आरिफा बेगम। कहा जाता है कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक सादात बारहा से था, जिन्होंने कई पुश्त कबल पानीपत से हिजरत करके पटना में रिहाइश अख्तियार कर ली थी। तस्करों के मुताबिक शाद की नानी हाल और दादी हाल दोनों ही जगह इल्म अदब का चर्चा था। माली फरागत और खुशहाली भी थी जिसके सबब शाद की परवरिश व परदाख्त और इब्तदाई तालीम व तरबियत खासे रईसाना अंदाज में हुई। इब्तदा से ही शायरी की तरफ तवज्जो रही और बचपन में अपनी पतंग के हवाले से ये अशआर लिख डाले। जो कोई इस तलंगी को लूटे संग आफत से उसका सर टूटे, उसके घर बेसबब लड़ाई हो उसकी जोरू भी बेसबब छूटे।
1: बचपन के शौक ने जवानी की सरहदों में कदम रखा तो शाद ने सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद से मशरे सुखन लेना शुरू किया और जल्द ही माँ से शोराय कराम में मुमताज तरीन मकाम हासिल कर लिया। इसके बावजूद ताउम्र उस्ताद की कद्रदानी में कोई कमी न की, यहाँ तक के जिंदगी के आखिरी दिनों में खुद अपनी सेहत को दांव पर लगाकर उस्ताद के हवालो आसार पे मुस्तमिल एक किताब हयात फरियाद भी लिखी।
0: दरअसल ये वजादारी और इंकसार शाद के मिजाज का एक हिस्सा है। उन्हें खान बहादुर का खिताब मिला, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए और हुकूमत के अहम ओहदादारों के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात रहे। इसके बावजूद जब उनकी तसनीफ नवाए वतन के हवाले से रिसाला और अलपंच में एक हंगामा खड़ा हुआ और मुखालफीन ने उन पर तरह तरह से कीचड़ उछाला तो उन्होंने शाइस्तगी का दामन हाथ से न छोड़ा। खुदा भला करे ऐ शाद नुक्ता चीनों का, बता दिया मुझे बच बच के रास्ता चलना।

0: इसमें शक नहीं कि दोस्तों की बेइल्तफाती और दुश्मनों की साजिशों का सदमा शाद ने उम्र भर दिल पे उठाया और ज़िंदगी के इन तजुर्बों के नतीजे में हुज़्न व मलाल और हसरत व गम का एक अजीब व गरीब रंग उनकी शायरी में उभर आया। इसके बावजूद शाद न जाहिद खुश्क बने न तारिक दुनिया रहे। उनकी दो शादियां हुईं। पहली शादी 1862 ईस्वी में कुलसूम फातमा बिनते मीर आगा उर्फ मीर संगी जान से हुई, जिनकी औलादों में सिर्फ एक साहिबजादे सैयद हुसैन खां जिंदा रहे। उनकी एक बेटी हुस्न आरा बेगम थीं, जिनके साहिबजादगान सैयद सुल्तान अहमद फातमी और सैयद नकी अहमद इरशाद बकैद हयात हैं और ख़ुद भी मारूफ अदीबों में शुमार होते हैं। पहली अहलिया की वफात के बाद दूसरी शादी जहरा बेगम से हुई, जिनसे सिर्फ एक लड़की आमना बेगम पैदा हुई।
1: कहा जाता है कि शाद ने उस जमाने के रईसों की रवायत पर अमल करते हुए बहु मालिम नाम की एक औरत से इश्क भी किया और खासे बदनाम भी हुए। शाद ने अपनी आपबीती शाद की कहानी शाद की जुबानी में कहीं इसका जिक्र नहीं किया, मगर नबी रहे शाद सैयद नकी अहमद इरशाद ने हजरत शाद से उसकी शदीद वापस्तगी का एतराफ करते हुए लिखा है कि उसने शाद और उनके अजीजों अकारीब की लगातार 24 बरसों तक खिदमत की। यहाँ तक कि शाद ने उसके इंतकाल के बाद जो पहली गज़ल कही उस पर बहु मालिन की वफात का गम हावी है।

ऐसा लगता है कि बहुमालिन की वफात ने शाद को खासा दिल शिकस्ता कर दिया था। शाद ने उसकी मौत पर जो तारीख रहलत निकाली, इससे भी उनके गम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहू रुखसत हुई अफसोस मुझसे, हुई तारीख रुखसत रुखसत दिल। वो इसके बाद भी एक अरसे तक जिंदा रहे, मगर शायद दिल गिरफ्तार ही रहे। मकतूबात शाद में उन्होंने एक जगह इस वाक़े की तरफ ये कहकर इशारा किया है कि उसका मरना मेरी मौत और मसाइब का पेश खीमा है। बखुदा मुझको बजुज मौत के अब कुछ नहीं सूझता। शाद गर्चे जिंदगी के बेशतर हिस्से में अपने तखल्लुस के बरअक्स नाशाद ही रहे, मगर कभी खिदमत अदब से पीछे न हटे। बहजात फातमी के मुताबिक उन्होंने नज़्मो नसर की कुल 60 किताबें अपनी यादगार छोड़ी। गुलशन हयात के मुताबिक उनके शागिर्दों की कुल तादाद 52 है, मगर महमूद

0: अली खां सभा के मुताबिक ये तादाद 150 तक पहुंचती है। नाकिदों का ख्याल है कि नज़्म व नसर पे यकसा कुदरत रखने वाला ऐसा फनकार अब तक कम अज कम रियासत बिहार में नहीं पैदा हुए। प्रोफेसर खलीलुर रहमान आज़मी ने बरसों पहले दुरुस्त लिखा था कि फारसी शायरी के आबो गिल और पूरब देश की नरमी सलोने पन और मौसीकियत के इम्तिजाज से अपनी शायरी का पैकर उभारने वाले शाद अजीम आबादी एक पहलूदार अदबी शख्सियत के मालिक हैं। शायरी की दुनिया में उनका तनव्वो काबिले दीद है।
1: कादिरुल कलामी तो गोया शाद पर ख़त्म हो गई थी। उन्होंने गज़ल, कसीदा, मरसिया और कतआत व रुबाइयात हर सिनफ़ सुखन में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। हद तो ये है कि मुस्तजाद जैसी मुश्किल सिनफ़ सुखन में भी फ़नी पुख्तगी का बेमिसाल नमूना पेश किया।

शिकवे को असर की मंजिल तक पहुंचने में 50 साल लग गए, मगर 1977 ता 1980 न सिर्फ उनके मज़ार की तामीर हुई बल्कि उनकी तफहीम का भी नया दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। बिहार उर्दू अकादमी ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में कुल हिंद सेमिनार और मुशायरा मुनक़िद किया और इस मौके पर अपने तर्जमान ज़बानो अदब का खुसूसी शुमारा भी निकाला। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने अकादमी के एक इशाती मंसूबे के तहत कुल्लियात शाद मा मुकद्दमा 3 जिल्दों में तरतीब दिया। शाद की नसर निगारी पर डॉक्टर वहाब अशरफी का ग्रां कद्र तहकीकी मकाला ज़ेवरे तबा से आरास्ता हुआ और डॉक्टर अकबर अली ने उनकी गज़लों का एक इंतखाब हिंदी में शाया करवाया। शाद अजीमाबादी मेमोरियल कमेटी ने कई किताबचे छापे और अजीमाबाद की एक सकाफती तंजीम नवशक्ति निकेतन ने हर साल 7 जनवरी को यौम शाद मनाने का सिलसिला शुरू किया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पहचान से। गायक कलाकार हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर। गीत इंदिवर का है और इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आए दिन बाहर के से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है RD बर्मन का।

आंखों में हम आपके सपने सजाए हैं। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना से, किशोर कुमार और आशा भोसले की ही आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। अगला भजन प्रस्तुत है, स्वर है पुरुषोत्तम दास जलोटा का।

लता मंगेशकर के स्वर पे अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर यह कार्यक्रम। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है सुरेश वाडकर का।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं वसुंधरा कोमलकली और उनके साथी। आइए इनसे सुनते हैं राग रामकली।

वसुंधरा कोमलकली और उनके साथियों से अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत राग रामकली। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आपको हम ले चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म बजरंगबली से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और अजीज नजा, गीतकार प्रदीप और संगीत दिया है अजीज नजा ने।

आराधना फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फर्ज से। आवाजें हैं मुकेश और लता की, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। संगीतकार थे अंदत्ता, गीतकार साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम धूल का फूल। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हिमालय की गोद में। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया है।

शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर से। गायक कलाकार थी आशा भोसले और संगीत दिया था नौशाद ने। श्रोता अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पारसमणि से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। गीत के बोल लिखे हैं असाद भोपाली ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज का यह गीत। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पारख से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

इंदिवर के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म समझौता से। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की। संगीत दिया था कल्याण सी आना जी ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आरजू से। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यह गीत।

विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। वो है तंबाकू का सेवन। अब चाहे गुटखा हो, खैनी हो, बीड़ी, सिगरेट या पान मसाला, तंबाकू किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। तंबाकू में निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है जो व्यक्ति को इसकी लत लगा देता है। इन सभी के लगातार सेवन से मुंह का कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्या, सांस लेने में तकलीफ और दांतों की खराबी जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भारत में हर वर्ष लाखों लोग तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि युवा और किशोर भी इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रहे हैं। मैंने कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा तंबाकू नुकसान नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी छोटी सी शुरुआत के बाद बड़ी सी लत लग जाती है। तंबाकू हो या फिर कोई और आदत, या कहें कि कोई भी लत, उसे छोड़ना कठिन नहीं होता, बस जरूरत होती है दृढ़ संकल्प की। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ गुटखा खाता हूं, सिगरेट नहीं पीता। लेकिन गुटखा भी उतना ही खतरनाक है, इससे मुंह का खुलना बंद हो सकता है और कैंसर तक हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि तंबाकू का कोई सुरक्षित रूप नहीं होता। श्रोता बनो, तंबाकू हो या फिर कोई लत, वो केवल शरीर ही नहीं पूरे परिवार और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। हर दिन तंबाकू पे खर्च होने वाला पैसा धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाता है। सोचिए, वही पैसा बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरत या फिर बचत में लगाया जाए तो कितना बेहतर होगा। बहनों, तंबाकू छोड़ना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। इसे छोड़ने के लिए योग करें, परिवार और दोस्तों का सहयोग लें, तंबाकू खाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और अगर खाने का मन भी करे तो तंबाकू की जगह सौंफ, इलायची खा लें। आज लिया गया एक छोटा सा फैसला आपके आने वाले जीवन को सुरक्षित बना सकता है। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होंगी, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म वक्त से। गायक कलाकार थे मन्ना डे, संगीत दिया था रवि ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न

इस गीत के बाद आइए बहनों, एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार और वार्ताकार मैं स्वयं हूँ। मेरी वार्ता है तो इसे सुने और महिलाएं खास करके जाने कि उनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ श्वेता और एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत आइए जानते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार। श्रोताओं, क्या आप जानती हैं कि कानून ने आपको कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं जिनकी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू हिंसा से संरक्षण के अधिकार की। यदि किसी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक हिंसा होती है तो वह कानून की सहायता ले सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार। यदि किसी महिला को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो शिकायत समिति के माध्यम से न्याय पाया जा सकता है। तीसरा है संपत्ति में अधिकार। आज बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त है। ये महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है। चौथा है मातृत्व लाभ का अधिकार। कामकाजी महिलाओं को प्रसूति अवकाश और संबंधित सुविधाएं कानून के द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। श्रोताओं, अधिकार तभी मजबूत होते हैं जब हमें उनकी जानकारी हो। अज्ञानता कमजोरी है लेकिन जानकारी शक्ति है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी विधिक

सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकती हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि शिक्षित महिला ही सशक्त महिला है। अपने अधिकार को जानिए, उन्हें अपनाइए और समाज में अपनी मजबूत पहचान बनाइए। इसी ज्ञानवर्धक संदेश के साथ मैं आपकी श्वेता लेती हूं आपसे विदा। नमस्कार। बहनों, आज का दौर इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है। पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी, मनोरंजन और बातचीत सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इंटरनेट जितना उपयोगी है उतना ही सावधानी बरतने की भी जरूरत है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। तो चलिए, हमारी इस चर्चा का विषय भी यही है, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित इंटरनेट उपयोग। बहनों, आजकल साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी लिंक, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर गलत संदेश और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री, ये सभी खतरे इंटरनेट पर मौजूद हैं। ऐसे में हम सभी का जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। बहनों, बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी देना जरूरी है और माता पिता की ये जिम्मेदारी भी है। बच्चों को समझाएं कि किसी अनजान लिंक पर वो एकदम से क्लिक ना करें, पहले जानें, समझें, पड़ताल करें, उसके बाद ही ऐसे कदम को उठाएं। निजी जानकारी किसी और के साथ साझा ना करें, ना तो आप उसे बताएं किसी को और ना ही मोबाइल के मार्फत इसको साझा करें। पढ़ाई और जरूरी काम के लिए ही आप इंटरनेट का, मोबाइल का प्रयोग करें। महिलाओं को भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हमेशा अपने पासवर्ड को मजबूत बनाकर रखें, ओटीपी किसी को ना बताएं, ऑनलाइन उत्पीड़न होने पर तुरंत शिकायत करें और अगर बच्चों के साथ किसी तरह की कोई घटना होती है, किसी तरह के फोन कॉल्स आते हैं, किसी तरीके का ओटीपी बार बार आता है, तो वो अपने माता और पिता को इसकी जानकारी तुरंत दें। हमारी जागरूकता ही हमें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रख सकती है। तो बहनों, आइए हम भी जागरूक बने और अपने बच्चों को भी जागरूक बनाएं। इसी के साथ बहनों, वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। गर्मी बेहद बढ़ गई है, कभी कभी बारिश होती है तो बारिश के बाद निकलने वाली धूप बेहद चुभन वाली होती है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उससे बचने के लिए अलग अलग तरीके के पेय पदार्थ का सेवन करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि शिकंजी, मट्ठा, छाछ, नारियल पानी। आप किन्हीं का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक साधन है तरबूज का रस। शरीर में पानी की कमी होने पर उससे बचाव के लिए तरबूज का रस काफी मददगार होता है और इसे बनाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, वो बहुत आसान है इसे बनाना। आप सबसे पहले तरबूज को ले लें और फिर उसे धोकर साफ करके काट लें। काटने के बाद तरबूज में से आप बीज को निकाल दें और महीन महीन छोटे छोटे टुकड़े कर लें। टुकड़े करके इसे मिक्सी में बारीक पीस लें। फिर इसे अच्छे से या तो छन्नी में या पतले कपड़े में छान लें। छानने के बाद आप इसमें चीनी, काला नमक, सादा नमक और बर्फ के कुछ टुकड़े डाल सकती हैं। बर्फ के टुकड़े जब डालती हैं तो इसे एक बार फिर से मिक्सर में चला लें। इससे क्या होगा कि बर्फ के टुकड़े महीन बारीक होकर के अच्छी तरीके से इसके जूस में मिल जाएंगे। अब आप चाहें तो इसे ग्लास में निकालकर पुदीना या नींबू का रस डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें और खुद भी पिए। बहनों, ये बेहद फायदेमंद है सेहत के लिए और तुरंत ही शरीर में से पानी की कमी को पूरा कर देता है। तो डिहाइड्रेशन से इससे बचाव होता है और जितनी गर्मी है और परेशानी शरीर में है, चक्कर, कमजोरी की जो समस्या होती है, इन सभी से बचाव तुरंत ही हो जाता है। तो आप इस बार गर्मी में इसे पीकर देखें, स्वादिष्ट भी है और फायदेमंद भी है। तो चलिए बहनों, बातें होती रहेंगी, जानेंगे आगे और भी बहुत तरीके के ऐसे सुझाव, ऐसे टिप्स, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मैडम गर्मी बहुत ज़्यादा है, पेट में गर्मी हो रही है और शरीर में भी गर्मी हो जाती है। कई बार ऐसा है कि गर्मी के कारण आजकल पसीना भी नहीं आता और कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है। इसके लिए आप हमेशा सूती कपड़े पहने, और नहीं पहनने के कारण घमौरी हो जाती है। तो इसे बचाव के लिए आप हमेशा शरीर को ठंडा रखें, प्रतिदिन नहाएं, ढीले सूती कपड़े पहनें, प्रभावित जगह को साफ और सूखा रखें, और आप इसमें कैलामाइन लोशन लगा सकती हैं। इसको लगाने से खुजली और जलन में आराम मिलता है। अधिक पानी, नींबू पानी, नारियल पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो सके। कोशिश करें कि बहुत तंग या सिंथेटिक कपड़े ना पहनें। बहुत तंग कपड़े पहनने से इसमें दर्द होता है और ये फैलने लगता है। तो कोशिश करें कि हमेशा जब भी पहने तो ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। आप इसमें पाउडर लगा सकती हैं जिससे कि थोड़ा सा राहत मिलेगा और खुजली की समस्या नहीं होगी। जब खुजली होती है तो मन करता है कि घमौरियों को खूब खुजलाएं बैठकर, तो ऐसा नहीं करना है। नाखून लगने से ये और ज़्यादा फैल जाती हैं, इसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, दानों में कभी कभी पानी आ जाता है, कभी पस की भी समस्या हो जाती है। तो इससे बचें क्योंकि ये संक्रमित हो जाएगा तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो कोशिश करें कि नाखून ना लगने पाए। बहुत ज़्यादा गर्म और उमस वाले वातावरण में लंबे समय तक ना रहें। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद अगर घमौरियों में पस बनने लगे, तेज दर्द हो, बुखार आ जाए, या 1 से 2 सप्ताह तक यानी कि 14-15 दिनों तक आराम ना मिले, तो आप जरूर से जरूर त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बीमारी कोई भी हो बहनों, बीमारी बड़ी बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वक्त रहते आप बीमारी का इलाज कर लें। तो बहनों बातें तो बहुत हो गई, अब स्टूडियो में लगी घड़ी इशारा कर रही है कि धीरे धीरे वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी चाहें तो अपने सुझाव, अपनी व्यंजन विधियाँ हमें हमारे दिए गए पते पर लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, अब इसी के साथ दीजिए विदा। श्वेता को नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा

0: करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में।

स्वतः 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। दोपहर 1:15 पर आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद में फिल्मी गीतों का। दोपहर 2:10 पर हम आपको सुनवाएंगे रोजगार सूचना।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों को। दिन के 3 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रादेशिक संगीत। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। युववाणी में श्रोता सुनेंगे तरुण मिथिला। संध्या 5:40 पर आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों को। विद्यापति गीत का आनंद लेंगे शाम 6:10 पर।

6:30 आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर में श्रोता सुनेंगे झरोखा। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7 बजे। साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। फिल्मी गीतों का मिलेंगे संध्या काल में 7:52 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विज्ञान कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे युवा भारती। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोताओं में भी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

विजय प्रकाश और दिव्या कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, समय हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का। श्रोता अपने पत्रों के माध्यम से अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश हम तक भेजते हैं और हम उनकी फरमाइश आपकी पसंद हम आप श्रोताओं की पसंद के गीत हम आपको सुनवाते हैं और आप हम इससे जुड़े हुए रहते हैं। हमारा आपका एक प्यारा सा बंधन बनता है इस गीतों के माध्यम से और यूं ही बना रहे। और इतने सारे ढेर सारे पत्रों के बीच मैं बैठी रहती हूं आप लोगों का प्यारा प्यारा पसंदीदा गीत लेकर के और प्यारे प्यारे पत्रों में सुंदर सुंदर नाम और जगह बहुत सारे जगह से पंजाब महाराष्ट्र बिहार राजस्थान बहुत सारे हमारे प्रिय श्रोता पूरे भारतवर्ष से हमें पत्र भेजते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आपका यह पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र। पहला पत्र आया है गोकुल चौगंग जला सहरसा से। आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, कुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। इन लोगों ने सुनना चाहा है अंदाज फिल्म का।

गीत। एक और पत्र आया है जो है मोहम्मद कालीम दीवाना, मोहम्मद दानिश बाबू, मोहम्मद अमन बाबू, मोहम्मद सरफराज बाबू, मोहम्मद रियाज बाबू, सोनी बेगम, मोहम्मद सरत प्रवीण, शोहर प्रवीण, डॉली प्रवीण, आप लोगों की फरमाइश है। आप हैं लाल पोखर दरभंगा से। इनका कहना है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें तो आपको इसी गीत में शरीक करते। एक और ऐसे ऐसा ही बिल्कुल पत्र आया है। इनका कहना है कि सादर नमस्कार, कोई भी फिल्म का गीत आप हमें सुना दीजिए। तो कोई प्यारे से फिल्म का गीत मैं आपको सुनाती हूँ और इसी फिल्म का गीत अंदाज फिल्म का गीत आप सुनिए। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुलजा ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांस ठाकुर। एक और पत्र आया है जो है लुधियाना पंजाब से। इन्होंने लिखा है, प्रिय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार, हमें अपने पसंद के किसी भी फिल्मी गीत में शामिल करें। तो आप हैं अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली अल्लाह फकीर, डब्लू अल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। ये सुनते हैं इस प्यारे से फिल्म का गीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा,
1: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे संदेश पूर्व अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। एक और फरमाइश आई है, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आनंद का यह गीत। गायक कलाकार हैं मन्ना डे, गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने। यह फरमाइश आई है एकता रेडियो श्रोता संघ बरी खंजरपुर से, भागलपुर बिहार से भाई गुलफ राज आलम बेगम, शमा आरा दोस्त जमालुद्दीन, पाली से फरजा फातमा यूसुफ और हमजा। एक और पत्र है मेरे हाथ में, ये है नाहरमनटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरवान, मोहम्मद सलमान। इन लोग की फरमाइश है कि आप अपने पसंद का कोई भी गीत सुना दें। एक और ऐसा ही पत्र आया है, ये है, इन्होंने लिखा है सेवा में प्यार भरा आदाब, हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ किसी भी गीत के साथ पूरी करने का कष्ट करें। तो आप हैं नाज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। तो आपको क्यों ना इसी सुंदर से गीत में शरीक करते हैं और सुनते हैं यह गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: जिंदगी कैसी है पहली हाय, इस प्यारे से गीत को भी आप सुन रहे थे आपकी पसंद कार्यक्रम में। ये कभी हंसाता है और कभी रुलाता है और हमारा आपका साथ इस गीतों के माध्यम से यूं ही बना रहता है। कभी हम आपको मोटिवेशनल गीत सुनाते हैं, कभी रोमांटिक सॉन्ग सुनाते हैं और इसी तरह आप अपनी फरमाइश के माध्यम से हमसे जुड़े रहते हैं और यूं ही जुड़े रहिएगा श्रोताओं। ये सुनते हैं अगला गीत जिसे की फरमाइश आई है। फिल्म असली नकली का यह गीत सुनना चाहा है। गायक हैं मोहम्मद रफ़ी, गायिका हैं लता मंगेशकर, संगीत शंकर जयकिशन के हैं और गीत रचना हसरत जयपुरी ने की है। ये हैं बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र वंश प्रसाद। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोभने, वैष्णवी डोभने, चंचल डोभने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे। एक और पत्र आया है, ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, इन लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म असली नकली का यह गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: संदेश पूर्व आप सुन रहे थे फिल्म आराधना का गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन दिया था श्री बर्मन ने, गायक कलाकार किशोर कुमार। इस फिल्म की फरमाइश आई थी शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। बैठना से बालकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सौहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, गोविंदपुर धनबाद से सराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। आप लोगों ने सुना चाहता है फिल्म आराधना का यह गीत। अगली फरमाइश आई है, इन्होंने लिखा है आदरणीय उद्घोषक या उद्घोषिका आकाशवाणी दरभंगा, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, कृपया हमारे फिल्मों का गीत सुनाने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आप हैं आपका प्रिय श्रोता विजय, विनय रंजन, नेहा रंजन, बेला गार्डन, वार्ड नंबर 3, दरभंगा से। जिस तरह से आप हमारे आभारी रहते हैं, हम भी आपके आभारी हैं। इतने प्यारे प्यारे से आपके ही गीतों के माध्यम से हम भी इतने सुंदर सुंदर गीतों का आनंद लेते हैं। तो आपकी फरमाइश है, आपने सुनना चाहा है फिल्म सरगम का यह गीत, डफली वाले डफली बजा। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यालेलाल ने। एक और पत्र है, ये है डब वाली हरियाणा से, जेके बकोलिया और सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया। महाराज रेडियो श्रोता संघ से जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। इन लोग का कहना है गाना कोई भी आप अपनी पसंद का हमें सुना दे, धन्यवाद। तो क्यों ना हम इसी प्यारे से गीत में आपको शामिल करते हैं और सुनवाते हैं यह गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, एक और फरमाइश आई है आपकी पसंद कार्यक्रम में। यह है जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चानी नाज। इन्होंने सुना चाहे है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज़ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम सरवन ने। एक और फरमाइश आई है, ये है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। इन लोग की पसंद का इन्होंने कहा है कोई भी अपने पसंद का गीत सुना दे, क्यों ना हम आपको इसी गीत में शामिल करते हैं। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर।

अक्सर हरिद्वार से, रामपट्टी गौसनगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, अजय कुमार नमस्कार, कृपया अपने पसंद का कोई गीत सुना दें। तो शुभ नारायण महतो जी, आपके पूरे परिवार को, आपको सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुने थे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत। अगली फरमाइश आई है फिल्म हिमालय की गोद में। बोल हैं चांद सी महबूबा हूं मेरी, संगीत निर्देशन कल्याण जी आना जी ने किया है। यह फरमाइश आई है सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जगत बीरक, मीका बीरक। आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वसंत बत्ता। इन्होंने कहा है आप अपने पसंद का कोई भी गीत सुना दें। एक और पत्र इसी तरह से आया है जो है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, सीतर राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। श्रोताओं, लेवाई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश वर्मा, दत्रेगी से भागवत वर्मा, उज्जैन से बोरखेड़ा पित्रामल, जिला से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुनत, चेतन नहरा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुनत। इन्होंने लिखा है आपकी पसंद का कोई भी नगमा आप हमें सुना दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने प्यारे से पत्र भेजते हमें और आपको सुनाते हैं यही प्यारा सा गीत। आदर्श नगर मटोल, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, नवीना शर्मा, एंड्रोम थाना वंदा नगर इंदौर से, मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी।

गणेश आरती खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, इन लोगों का भी कहना है कि आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें, तो क्यों ना हम आपको इस प्यारे से गीत में शामिल करते हैं। पुणे से पंकज, आर्या, प्रियंका आदि, जरूर बडोट से बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ अब दीजिए इस प्यारे से कार्यक्रम आपकी पसंद से विदा। आप अपने पत्र और गीतों की फरमाइश हम तक भेज सकते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा 8460004 दरभंगा बिहार। श्रोताओं समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग ने आज बोधगया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। राष्ट्रपति ने बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता स्तूप में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बोधगया स्थित म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। इससे पहले गया हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ उच्चस्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद है। राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग की ये यात्रा भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा बौद्ध विरासत से जुड़े संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में

0: से प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारी संवाददाताओं ने बताया कि गया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी बारिश के कारण सब्जी, लीची और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। गया और सीवान में ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के सिसवन में सबसे अधिक 135.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गोपालगंज के भोरे में 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि बिना निबंधन वाली नाव का परिचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्देश दिया गया कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गंगा नदी में नावों का परिचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि खराब मौसम की सूचना मिलने पर गंगा नदी में नाव के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। अररिया जिले में श्रम नियोजन विभाग की ओर से 1-दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 108 लीटर नेपाली शराब जब्त किया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड स्थित रघुनाथपुर खराट गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। रोहतास जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज सासाराम सदर अस्पताल परिसर से तंबाकू और नशा निषेध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

बात प्रोग्राम का 134वां एडिशन होगा। इसका नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, वज़ीर आज़म दफ्तर और वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात के यूट्यूब चैनल पर इसका रास्त्र नशरिया होगा। हिंदी नशरिए के फौरी बाद इलाकाई ज़ुबानों में भी इसे नशर किया जाएगा। इसके बाद मैथिली ज़ुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। रियासत में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाक़े में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हुकूमत ने सिर्फ 7 लोगों की मौत की ही तस्दीक की है। हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि गया में 3, नवादा, मशरक़ी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 शख्स की मौत की खबर है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है और मालूकीन के नज़दीकी वरसा को 4-4 लाख रुपये इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। इधर हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि आंधी बारिश के सबब सब्ज़ी, लीची और आम की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खम्भे उखड़ गए, जिससे आमदोरफ्त और बिजली की फराहमी मुतासर हुई। महकमे मौसमियात ने आज भी रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सीवान के सिसवन में सबसे ज़्यादा 135.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गोपालगंज के भोरे में 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना ज़िला इंतजामिया ने गंगा नदी में कश्तियों को महफूज तरीके से चलाने के लिए सख्त हिदायत जारी की है। ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन SM की सदारत में मुनक़िद मीटिंग में कहा गया है कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन कश्तियों को चलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में हिदायत दी गई है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गंगा नदी में कश्ती नहीं चलाई जाएगी। साथ ही सभी घाटों पर पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट के जरिए निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। ज़िला मजिस्ट्रेट ने यह भी हिदायत दी है कि ख़राब मौसम की इतला मिलने पर गंगा नदी में कश्तियों की आमद रफ्त पर मुकम्मल तौर से पाबंदी रहेगी। अररिया ज़िले में महकमा वसाइल मेहनत और रोज़गार की जानिब से एक रोज़ा रोज़गार मेला का इनेकाद किया गया। वहीं ज़िले के नरपतगंज थाना इलाके से पुलिस ने छापेमारी करके 108 लीटर नेपाली शराब जब्त की है। शेखपुरा ज़िले के अरेरी ब्लॉक वाके रघुनाथपुर खराड़ गांव में हाई टेंशन तार की जद में आने से एक नौजवान की मौत हो गई। रोहतास ज़िले में आलमी योम माने तंबाकू के मौके पर आज सहसराम सदर अस्पताल अहाते में तंबाकू और नशा के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान सेहत अमलों ने नशा से पाक समाज की तामीर का अहद किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

होने की तिथि 29 मई 2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 के लिए कुल 12,256 पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 21 मई 2026, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून है। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना भर्ती 2026 कुल 60 पद ज्ञापित किए गए हैं। आवेदन

रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा कुल 11,127 पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 15 मई 2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 कुल पद 1,189 दिए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना यहीं समाप्त होती है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक

0: ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी

0: दीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिम

0: में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से

0: हुआ था, एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। पुनः हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया है। गीत लिखा है अनजान ने, गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोसले।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलते चलते से। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और गीत लिखा था अमित खन्ना ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत दिया है SD बर्मन ने। फिल्म चलती का नाम गारी।

साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी से। गायक कलाकार मुकेश और लता, संगीत निर्देशन खयाम ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और इस गीत को धुनों से सवारा है OP नैयर ने। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

गाता रहे मेरा दिल, यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। कलाकार हैं अनुराधा पडवाल और उनके साथी। आइए सुनते हैं राजस्थानी में यह गीत।

अनुराधा पौडवाल उनके साथियों को भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत में राजस्थानी में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील

0: इनकी?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
4: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
4: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
4: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
4: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं?
3: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
4: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
4: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ने से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।

0: बेनी एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताओ। दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
1: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
1: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
0: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
0: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
0: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
0: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।

0: आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरर थे, चेहरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई

0: जरूरत नहीं है गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
1: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
2: वो बेनी कहाँ है?
1: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
2: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
1: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
2: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में।
1: डॉक्टर,
2: हाँ डेजी, प्लीज बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
2: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
2: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
2: डेजी, धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। लो बेनी आ रहे हैं।
3: आइए आइए, कहां पे जाना?
4: ओ डॉक्टर,
3: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
4: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया है?
3: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
4: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
3: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
4: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
3: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
1: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
4: तुम्हारे लिए एक चीज है।
1: अच्छा, देखो तो।
4: लो, देख लो।
1: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
4: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
4: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
4: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
4: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़े ना समझो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख कर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा

0: तो फिर हंस दो, देखो ये ऐसे ऐसे
1: क्या क्या क्या हुआ आपको? यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना। बेनी डॉक्टर। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
2: Oh, no.
1: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
1: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह
4: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरिजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
4: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरिजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
3: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो। हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
4: गिरजा
3: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा?
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
5: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा

0: और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
5: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरा है लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि है तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए।

0: हाँ, वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है, और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर, बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है, और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से, इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर, क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है, और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है, कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है, अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी
1: प्रैंक करने वाली
0: जी
1: हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो
0: जी
1: सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी है
1: सैडनेस है
0: जी।
1: या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ।
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी,
0: जी।
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना,
0: जी
1: वो मेरा
0: जी जी जी
1: एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने

0: नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी।
0: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
1: अच्छा
0: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ,
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
1: हाँ।
0: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: क्या है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद
0: आवाज। हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है उस

0: कोई दो मत नहीं है, और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ। तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं आप बहुत अच्छा नर्तकी हैं उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: अच्छा वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं, तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर वो सीखी होती तो मैं बन जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ
0: हाँ।
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है
0: हाँ।
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी,
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब

0: इटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ। एक ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना, वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी।
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
1: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और बहुत मीठा संगीत है,
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ,
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में, और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
0: अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
0: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी।
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या,

0: आज इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती, तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही तो सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म जी, से जी। तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना। तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: हाँ, जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं जी, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब जी, जी। और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है, देखे
1: अच्छी
0: हाँ। तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी, तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी,
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा,
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप

0: बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ काम करके, दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको, ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी, तो ये बिहार बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार में जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है ऊपर
1: हाँ।
0: से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी

0: बाबू वाली की है ना, गंगा मैया तो है
1: ये, तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जी। सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है
0: जी।
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइटली तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी लेकिन,
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते,
1: खाते पीते हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या।
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा
0: बहुत,
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा।
1: हाँ।
0: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: समय? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
0: जी,
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: 30 गाने में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है,

0: साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
1: जी,
0: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माय गॉड। उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
1: शब्द भी लिख लेते थे
0: एक सेकंड में
1: 30 गाने एक समय पे,
0: 32 होंगे, 30 होंगे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
1: लगातार।
0: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे
1: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
0: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी ने
0: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
0: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है, क्या बोलना है।
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
0: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ।
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। हाँ। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: बोल दिया, मैं बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं,
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं,
1: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है,
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं।

0: तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी को ही। अच्छा, तो बोले 100%। अब देखते हैं क्या होता है
0: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
1: हाँ।
0: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं।
1: हाँ, ऐसा
0: हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
1: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
0: जी,
1: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
0: ऊर्जा सकारात।
1: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ।
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं या मुझे

0: फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी दूसरी सभा। सभा के प्रारंभ में आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के अंतर्गत आज हम सुनेंगे तरुण कुसुम।

सभी युवा श्रोताओं को स्वागत करते हैं कार्यक्रम तरुण कुसुम में। युवा श्रोता बंधु, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। बताते चले कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड द राइजिंग सन 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू हुआ था। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया था। हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित इसलिए विदेशी सरकार की दमन नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था, उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य भारत मित्र सन 1878 ईस्वी में, सार सुधानिधि सन 1879 ईस्वी और उचित वक्ता सन 1880 ईस्वी के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा चहुदिश लहरा रहा है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी हिंदी भाषा भाषियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ गीत संगीत भी सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी हम ब्रजेश कुमार सुमन की आवाज में ये हिंदी सुगम संगीत सुन रहे थे। आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने युवा श्रोताओं के साथ हिंदी पत्रकारिता और युवा इस विषय को लेकर। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंबई और मद्रास से हुआ। 1780 ईस्वी में प्रकाशित हिके का कलकत्ता गजट कदाचित इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदन मारतंड के प्रकाशित होने तक इन नगरों की एंग्लो इंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफ़ी विकसित हो गई थी। इन अंतिम वर्षों में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के में हिंदुस्तान इंटेलिजेंस ओरिएंटल इथोलॉजी नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमें उत्तर भारत के कितने ही अखबारों के उद्धरण थे। 1816 में गंगा किशोर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रवर्तन किया। यह पहला बंगला पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार पत्र समाचार दर्पण को जन्म दिया। यह स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है। उदंत मारतंड के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पछाही हिंदी रहती थी जिसे पत्र के संपादकों ने मध्य देशीय भाषा कहा है। श्रोताओं, अगर हम बात करें कि पत्रकारिता में और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता और जो हमारे युवा हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति और

अपने देश के प्रति, ये सबसे ये बहुत ही अहम है। पत्रकारिता करने के क्रम में हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिसके अंतर्गत कुछ यदि हम बताते चलें, जो कुछ जो विशेष सावधानियां हों वो इस वो ये कि कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से या हमारी लेखनी से ना निकले जिससे के समाज में जो एक वैमनस्यता है, समाज में जो एक आपसी सौहार्द है वो बिगड़े। आपसी सौहार्द बिगड़ना, कभी कभी कुछ अफवाह भी उड़ जाते हैं। हमें पत्रकारिता करते वक्त उन अफवाहों की ओर ध्यान नहीं देना है, और जो सटीक जानकारी है, कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि जो सही जानकारी है उसे कभी कभी छुपाना हमारे समाज हित में रहती है, या यदि उसे दिखाना ही है तो कुछ इस तरीके से दिखाएं कि लोग सीधे सीधे आहत न हों। अब अभी वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे जो कंटेंट हैं, जो विषय हैं, वो सारे के सारे सच हों ये आवश्यक नहीं है। जो फैक्ट चेक है वो पूरे जांच होने के बाद ही हम उसके बारे में कहीं पर अपनी बातों को हम रखें। और जहाँ तक भाषाई बात है, उस भाषाई जो व्याकरण है, जो जिस जैसे कि हिंदी के जो व्याकरण हैं, पत्रकारों को जो भी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता के जो की जो सीमाएं हैं, इसके साथ साथ जो बोलने में जो उच्चारण संबंधी जो बातें आती हैं, या लिखने में जो उच्चारण संबंधी जो बातें आती हैं, जो व्याकरण के दृष्टिकोण से जो शुद्ध रूप से लिखा जा सके उन्हीं बातों को रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सरल शब्दों में, यदि सरल शब्दों का यदि हम उपयोग करते हैं तो आम जन इसे भलीभांति समझती है। पत्रकारिता एक इस तरह का साहित्य है जो बिल्कुल ही सरल हो, आम जन इसे समझ सके। आइए, कार्यक्रम में आपसे यूं ही बातचीत चलती रहेगी और बीच बीच में गीत भी हम सुनते रहेंगे। आइए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, और इसके अंतर्गत आज हम युवा श्रोताओं चर्चा कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता को लेकर। हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग यूं कहा जाए कि 1873 से 1900 तक चलता है। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु का हरिश्चंद्र मैगजीन था और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300 से 350 से ऊपर है और ये नागपुर तक फैले हुए हैं। 19वीं शताब्दी के 25 वर्षों का आदर्श भारतेंदु की पत्रकारिता थी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद मैगजीन, श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी के रूप में भारतेंदु ने इस दिशा में पथ प्रदर्शन किया था। भारतेंदु के बाद की बात करें तो इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे पंडित रुद्रदत्त शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित वंशीधर, बद्री नारायण चौधरी, देवकी नंदन त्रिपाठी, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हुए जिनकी लेखनी, जिनकी बोली, जिनके वो ऐसे वक्ता थे कि जिन सभाओं में जहाँ कहीं भी वो बोलते थे या कुछ पत्र पत्रकारिताओं में जब वो लिखते थे तो लोग उनकी ओर, उनके लेखनी में और उनकी बातों की ओर आकर्षित होते थे। दोस्तों, जिन्होंने भाषा, शैली, साहित्य अथवा राजनीति के क्षेत्र में कोई अप्रतिम कार्य किया हो, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी प्रदीप, क्षत्रिय पत्रिका, आनंद कादंबनी, भारतेंदु, देवनागरी प्रचारक, कवि के चित्रकार आदि आदि अनेक

ऐसी महत्वपूर्ण किताबें भी हिंदी में लिखी गई जो एक तरह से हमारे उस जमाने के जो 19वीं शताब्दी के साहित्यिकों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शैलीकारों और चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि थी। तीसरे चरण की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और बहुरूपता मिलती है। धीरे धीरे परिस्थिति बदली और हम हिंदी पत्रों को साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं। इस शताब्दी से धर्म और समाज सुधार के आंदोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय चेतना ने धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलतः अधिकांश पत्र साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले। राजनीतिक क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता को नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। आधुनिक युग की बात करें तो 1921 के बाद हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ साथ पल्लवित पाते हैं। इसी समय के लगभग हिंदी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृति संपादक सामने आए जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे और जो हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी और बांग्ला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्य वर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंच गया और इसके इस प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्रपंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए नए कानून बनाकर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, परंतु जेल, जुर्माना और अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी हिंदी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी। हमारे आज के युवाओं को उन सभी हमारे आदर्श पत्रकारों से सीख लेनी चाहिए। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

अभी हम ये गीत ब्रजेश कुमार सुमन की आवाज़ में सुन रहे थे। श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता और युवाओं के बारे में। 1990 के दशक की बात करें तो भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सारे, खासकर इसके अंतर्गत यदि हम आकाशवाणी को शामिल न करें तो ये बेमानी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोग अभी भी सटीक जानकारी के लिए इसे देखते हैं, इसे सुनते हैं। कई सारे ऐसे पत्रकार जिन्होंने आकाशवाणी से जुड़कर, दूरदर्शन से जुड़कर उन्होंने पत्रकारिता की और लोगों तक सटीक जानकारी उपलब्ध कराई। जहां पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आई नई तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नए उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। श्रोताओं, एक उत्साहजनक बात और भी है कि IRS सर्वे में जिन शहरों को सबसे तेजी से उभरता माना गया है उनमें से ज्यादातर हिंदी हृदय प्रदेश के हैं। मतलब साफ है कि अगर पिछले 3 दशक में दक्षिण के राज्यों ने विकास की जबरदस्त पींगें बढ़ाई तो आने वाले दशक हम हिंदी वालों के लिए है। मतलब साफ है,

0: पिछले 4 दशकों में हमने लगातार खोया है। हमें उन स्वतंत्रता संग्राम के समय के जो भी पत्रकार थे, जो देश भावना की, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो पत्रकारिता करते थे, अभी भी वही जुनून हम में होना चाहिए। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत सुनते हैं।
1: सुलहो सिंगार

मतलब साफ है कि हिंदी की आकांक्षाओं का यह विस्तार पत्रकारों की ओर भी देख रहा है। प्रगति की चेतना के साथ समाज की निचली कतार में बैठे लोग भी समाचार पत्रों की पंक्तियों में दिखने लगे हैं। पिछले IAS, IIT और तमाम शिक्षा परिषदों के परिणामों ने साबित कर दिया कि हिंदी भाषियों में सबसे निचली सीढ़ियों पर बैठे लोग भी जबरदस्त उछाल के लिए तैयार हैं। हिंदी के पत्रकारों को उनसे एक कदम आगे चलना होगा ताकि उस जगह को फिर से हासिल कर सकें जिसे

0: श्रोताओं, अभी हम अपने इस कार्यक्रम यानी युवाणी में हिंदी पत्रकारिता और ख़ासकर युवाओं को संबोधित इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम फिल्म संगीत की ओर बढ़ चले हैं, तो श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।

अभी हम सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अखियों के झड़कों से, हेमलता की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। श्रोताओं, लीजिए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर हम सुनेंगे विद्यापति गीत। 6:25 पर संध्या में मैथिली संवाद का प्रसारण किया जाएगा और किसान भाई सुनेंगे शाम 6:30 पर गाम घर। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे झड़ोखा। इसी के अंतर्गत संध्या 7 किसान भाई सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम।

प्रादेशिक समाचार हम सुनेंगे संध्या 7:30 पर और 7:47 पर जिले की हलचल, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, कुछ फिल्म संगीत हम सुनेंगे 7:52 पर और आज शनिवार है, आज हम सुनेंगे विज्ञान कार्यक्रम 8:15 पर।

0: समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू खबरें और 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11:00 मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की

0: बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं विद्यापति गीत।

अभी आप सुन रहे थे काशीकांत काशीनाथ झा किरण की आवाज़ में ये गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

नमस्कार। आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आई बोधगयाक विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना कयलनि। ओ पवित्र बोधि वृक्षक नीचा ध्यान सेहो लगौलनि। राष्ट्रपति बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता स्तूप में पूजा अर्चना कयलनि। संगहि ओ बोधगया स्थित म्यांमार के कतेको बौद्ध मठ सभक दौरा सेहो कयलनि। एहिसँ पूर्व गया हवाई अड्डा पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के गर्मजोशी सँ स्वागत कयलनि। हुनका संग उच्च स्तरीय अधिकारी आ बौद्ध प्रतिनिधि लोकनिक एकटा शिष्टमंडल सेहो मौजूद अछि। राष्ट्रपति आइ साँझ विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर सँ भेंट करता। सोम दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक संग दुनू देशक मध्य ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक संबंध के मजबूत करबाक लेल चर्चा करता। दुनू देशक मध्य द्विपक्षीय सहयोगक दिशा में एकटा महत्वपूर्ण पहल मानल जा रहल अछि। यात्राक क्रम में राष्ट्रपति व्यापार आ उद्योग जगत सँ वार्ता लेल मुंबई सेहो जायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि भोर 11 बजे आकाशवाणीक मन की बात कार्यक्रम में देश आ विदेशक लोक सब संग अपन विचार साझा करता। ई मन की बात कार्यक्रमक 134वीं कड़ी हैत। एकर प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक संपूर्ण नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कयल जायत। AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सेहो एकर सोझे प्रसारण हैत। एकर तुरंत बाद मैथिली भाषा में एकर प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केन्द्र सँ कयल जायत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरीक अध्यक्षता में पटना समाहरणालय भवन में आइ जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति आ जिला नागरिक परिषदक बैसक आयोजित कयल गेल। श्री चौधरी कहलनि जे जनहित सँ जुड़ल योजना सभक बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करब हमर सर्वोच्च प्राथमिकता अछि। ओ राज्य में चलि रहल विभिन्न योजना सभकें समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अधिकारी लोकनिकें आवश्यक दिशा निर्देश देलनि। केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य आ सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहलनि जे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामक संबंध में भ्रामक विज्ञापन देबाक लेल एकटा निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 टाकाक जुर्माना लगौलक अछि। ओ कहलनि जे प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित कयलक। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी कहलनि जे ई कार्रवाई कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही आ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करबाक लेल सरकारक प्रतिबद्धता के देखबैत अछि। ओ जनौलनि जे प्राधिकरण एखन धरि कोचिंग संस्थान सबकें 60 सँ बेसी नोटिस जारी कयलक अछि आ 1,46,00,000 टाका सँ बेसी के जुर्माना लगौलक अछि। राज्य में बिहार बरखा आ ठनका खसबाक फराक फराक घटना में कम से कम 13 गोटेक मृत्यु भ गेल। हालांकि सरकार मात्र 7 गोटेक मृत्युक पुष्टि कयलक अछि। हमर संवाददाता सब जनौलनि जे गया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण आ औरंगाबाद में 2-2 गोटेक मृत्यु भेल अछि। ओतहि सारण, खगड़िया, रोहतास आ भागलपुर में 1-1 व्यक्तिक मृत्युक खबरि अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि हादसा पर गहीर दुख व्यक्त करैत मृतक लोकनिक निकटतम आश्रित के 4,00,000 टाका अनुग्रह अनुदान देबाक घोषणा कयलनि अछि। एम्हर हमर संवाददाता सब जनौलनि जे अन्हर, बिहाड़ आ बरखाक कारण तरकारी, लीची आ आमक फसिल के भारी नुकसान भेल अछि। कतेको ठाम गाछ आ बिजलीक खम्भा उखड़ि गेल, जाहिसँ आवागमन आ बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भेल। गया

0: सिवन में ट्रेनक परिचालन सेहो बाधित भेल। मौसम विभाग आई पश्चिम चंपारण जिलाक एक दू ठाम मेघ गर्जन, ठनका आ तेज हवाक संग भारी वर्षाक संभावना व्यक्त कयलक अछि। ओतहि प्रदेशक दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण आ दक्षिण पूर्व भागक जिलाक एक दू ठाम मेघ गर्जन ठनकाक संग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटाक रफ्तार सँ हवा चलबाक संभावना अछि। मधुबनी जिलाक लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मा गामक गणेश चौक लग NH-227 पर दू मोटरसाइकिलक सोझा सोझी टक्कर में 3 गोटेक मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 2 आन गंभीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह। घायल सभक इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में कयल जा रहल अछि। अररिया जिला में श्रम नियोजन विभाग दिस सँ 1 दिवसीय रोजगार मेलाक आयोजन कयल गेल। ओतहि जिलाक नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस छापेमारी कऽ 108 लीटर नेपाली शराब जब्त कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का

0: हवा चलबाक संभावना अछि। मधुबनी जिलाक लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मा गामक गणेश चौक लग NH-227 पर दू मोटरसाइकिलक सोझा सोझी टक्कर में 3 गोटेक मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 2 आन गंभीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह। घायल सभक इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में कयल जा रहल अछि। अररिया जिला में श्रम नियोजन विभाग दिस सँ 1 दिवसीय रोजगार मेलाक आयोजन कयल गेल। ओतहि जिलाक नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस छापेमारी कऽ 108 लीटर नेपाली शराब जब्त कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इसके साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। लीजिए, प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गाम घर।

कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत झरोखा सुननिहार समस्त श्रोता बंधु के आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार। श्रोता बंधु, लगातार बदल रहल अई मौसम में अपना सबके विशेष रूप से सतर्क रहबाक आवश्यकता रहत है, क्याकि देखिए रहल छे ई बरखा बुन्नी एखन मनुख की मालजाल चिड़ै चुनमुनी से लौक कीड़ा मकोड़ा तक सेहो अपन आ अपन बाल बच्चा के सुरक्षा के लौक जगह ताकबाक फिराक में रहत है। एहने में अपना सबके सतर्क रहनाए आवश्यक है। बात बरखा के केलों तो मोन पारू जे नेनपन में चारू कात पसरल डबरा पोखर आ ओई में बैसल बगुला आ टटराइत बेंग आई जो अपना सब एक बेर फेर अपन यादक झरोखा के खोल के अतीत दिस ताकी तखन अपन मिथिला क्षेत्र पोखर डबरा आहर पानि आ धार से समृद्ध देखवा में आवे छल। श्रोता बंधु, ई जल स्रोत नहीं केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक छल बल्कि जल संरक्षण का अपना सबक पारंपरिक आ दूरदर्शी व्यवस्था का हिस्सा छल। बरखा का जल एहि जलाशय सब में जमा हुई छल जकर कारण से अपना सबक क्षेत्र का भूजल स्तर बनल रहे छल आ संगे ही खेती बाड़ी के लेल पर्याप्त पानि सेहो उपलब्ध रहे छल। आजुक समय में अपना सब देखे छी जे अपनो सबक उपेक्षा आ अनियोजित काज सबक कारण से अनेकहूँ पोखर आ डबरा त छोड़ू कएकटा धारो समाप्ते जकाँ भेल अछि। एकरे परिणाम अपना सब एखुनका समय में जल संकट के रूप में अपना सबक सामने आबि रहल अछि। आवश्यकता अछि जे अपना सब अपन एहि समृद्ध विरासत के पुनर्जीवित करी। जल स्रोत सबके संरक्षण केवल पर्यावरणिक रक्षा नहीं अछि बल्कि आबय वाला पीढ़ी सबक लेल सुरक्षित भविष्य के एकटा विश्वास सेहो अछि, क्याकि मिथिला के असल पहचान आ समृद्धि जल संरक्षणे से जुड़ल अछि। अपना सब सदैव कहबो करे छी जे पग पग पोखरि माछ मखान सरस बोली मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक ई अपन मिथिलांचल थिक। त अपना सब एक बेर फेर ई बात के गहनता से सोची जे जल अछि त कैल अछि ई केवल एकटा नारा नहि बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व के आधार अछि। श्रोता बंधु, जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य संसाधन है।

अछि, जकर बिना जीवनक कल्पना नहि कयल जा सकैत अछि। पृथ्वीक अधिकांश भाग जलसँ घिरायल अछि, मुदा एहिमे सँ अधिकांश जल अपना सबके पीबा योग्य नहि अछि। पीबा योग्य जे मीठ जल, जे उपयुक्त जल अछि, ओ बहुत सीमित मात्रामे अपना सब लगमे उपलब्ध अछि। मुदा बढ़ैत जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आ ई पानिक अंधाधुंध दोहन के कारणे आइ अपना सबके एहन समृद्ध जल क्षेत्र वाला मिथिलांचलों के सामने जल संकट एकटा गंभीर चुनौती बनिक आबि गेल हँ। एहन में जल संरक्षण समय के सबसे पैघ आवश्यकता बनि गेल हँ। श्रोता बंधु, अपना सब जलक उपयोग केवल पीबाक लेल नहि, बल्कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, मालजाल के पालबाक लेल आ दैनिक जीवन में लगभग सबटा काज में करै छी। अपना सबके मिथिलांचल एहन कृषि प्रधान क्षेत्र में तो बुझू खेती पूरा अहि पर निर्भर अछि। यदि ई जल स्रोत सुखा गेल या भूजल स्तर जे लगातार खसैत जा रहल अछि अहिना रहल, तो बुझू खाद उत्पादन प्रभावित आयत आ देशक अर्थव्यवस्था पर सेहो प्रभाव पड़त। अपना सबके एहि पर पूरा पूरा ध्यान देव पड़त, तखने ई जे हुअवला वर्षा अइ तकर अपना सब आनंद उठा सकब आ मिथिलांचल के जे परंपरा छे गीत नाद ओहो सुनि सकब। तऽ आउ पहले सुनी एकटा सुंदर सन महादेवक गीत, तकर बाद फेर हेतै गपशप।

हे गौरा तोहरो सजनमाना, राधा मोहन मिश्र के स्वर में इस सुंदर सन गीत के अपना सब एखन आनंद उठा रहल छलौं। और अपना सब जे गप कर रहल छलौं जे पानिक संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि भविष्य बचेबा की सबसे पैघ संकल्प है। श्रोता बंधु, एखुनका समय में अनेकों शहर आ गाम जल संकट का सामना कर रहा है। कई क्षेत्र में लोग पीबाक जे पैन छे तकर बहुत बेसी व्यवस्था को कर रहल छथि, और देखी रहल छी जे सरकार दिस से बहुतो रास व्यवस्था अपना सबके लेल कैल गेल अछि। मुदा भूजल का अत्यधिक दोहन पोखरि आ धार सबके जे छे अपना सबके कुव्यवस्था संगहि वर्षा जल के उचित संचयन नहीं भेनाय, आ सबसे पैघ गप त ई पानिक प्रदूषण एहन समस्या इस संकट का और बेसी गहीर कऽ रहल अछि। यदि समय रहत अपना सब कोनो प्रभावी डेग नहीं उठेलौं त आवै वाला जे पीढ़ी छथि ओ गंभीर जल संकट का सामना कऽ सकै छथि। श्रोता बंधु, पानिक संरक्षण के लेल सबसे प्रभावी उपाय में वर्षा जल संचयन प्रमुख है। घर, स्कूल, सरकारी भवन आ उद्योग सब में जे वर्षा जल है ओकरा संग्रहित कऽ भूजल स्तर के बढ़ाओल जा सकैत अछि। एकरा अलावा जे अपना सब के पोखरि अछि, इनार अछि आ आनो आन जे जलाशय के अखन अपना सब गप केलहुँ हँ ओकरा दिस अपना सबके फेर से ध्यान देबऽ पड़त, ओकर संरक्षण करऽ पड़त, ओकरा पुनर्जीवन आवश्यक अछि देनाइ, कियाकि देखै छी जे अनेरुआ केचली, अनेरुआ जे अपना सब एखन गप केलहुँ हँ जे कूड़ा कचरा एकरा बर्बाद कऽ रहल अछि। संगहि संग बहुतो रास जे अपना सबके ग्रामीण बंधु छथि ओ खेती में सेहो ड्रिप पटौनी और स्प्रिंकलर एहन आधुनिक तकनीक के उपयोग कऽ पानि के बचत कऽ सकै छथि। आ श्रोता बंधु, हम तो एकटा बात और कहब जे अपना सब ई सब तो बाहरी गप भेल, घरेलू स्तर पर सेहो जे अपना सब टंकी खुलल छोड़ि दै छी ओकरा पर ध्यान अपना सबके राखऽ पड़त। संगहि संग ठोपे ठोप जे कतौ से रिसाव होइत हुआ, कतौ से चुबैत हुआ तो ओकरा तुरंते ठीक करेनाय आ आवश्यकता के अनुसारे पानिक उपयोग केनाय एकटा महत्वपूर्ण डेग हैत, कियाकि बहुतो गोटे देखै छियनि जे अनेरो गाड़ी धुआक नाम पर या

बहुतो एहन काज छै जाहिमे अनेरुआ पानि बर्बाद कऽ दै छथि, कियाकि पानिक संरक्षण केवल सरकारके जिम्मेदारी नहि बल्कि ई अपना सभक यानी प्रत्येक नागरिकके नैतिक कर्तव्य अछि। अपना सबके देखते छी जे विद्यालय सबमे सामाजिक संगठन दिससँ आओर मीडियो सबके माध्यमसँ अपना सबके जल संरक्षणके प्रति जागरूक कयल जाइत अछि, आओर ई आवश्यको अछि जे अपना सब घरे घर जाकऽ लोकके बुझबियौन जे पानि कतेक आवश्यक अछि। एकटा समय छल जे अपना सब चापाकलमे जखन कखनो ठंडा पानिके आवश्यकता पड़ै छल गर्मीमे तऽ 10 पम्प चलाकऽ पानि निकालि लैत रहौँ आओर पानि पीब लैत रहौँ, या फिर नहेबाके जे आवश्यकता पड़ै छल तऽ मोन पारू जे बस एक गोटे कलके हैंडल पकड़िकऽ चलबैत रहै छलथि आओर अपना सब लगातार नहाय छलहुँ, मुदा आब ओ समय नहि, ओ देवी नहि ओ कड़ा। तऽ जाबत धरि समाजके हरेक व्यक्ति जल बचेबाक संकल्प नहि लेता ताबत धरि ई समस्याके स्थायी समाधान संभव नहि। तऽ अपना सब कहि सकै छी जे जल जीवनके आधार अछि आओर एकर संरक्षण मानवताके उज्ज्वल भविष्यके लेल अनिवार्य। अपना सबके एखुनके संकल्प जे पानिक हरेक बूंदके अपना सब सम्मान करी आ ओकरा व्यर्थ नहि बहऽ दी, ई बहुत पैघ हैत। जल संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षणके विषय नहि बल्कि आबयवला पीढ़ीके सुरक्षित आओर समृद्ध भविष्यके गारंटी अछि। यदि अपना सब आजुक जे ई व्यवस्था अछि जे एखुनका ई जल बचेबाक काज अइ नहि बचा पेलहुँ तऽ बुझू अपना सब आबयवला जीवनके नहि बचा पायब। श्रोतगण, अपना सब एकरा लेल वृक्षारोपण सेहो कऽ सकै छी। बहुतो ठाम देखै छी जे वृक्षारोपणके लोक एकटा संकल्पके रूपमे अपना लगमे बनाकर रखने छथि, कियाकि वृक्षारोपणे भविष्यके सुरक्षाके सबसँ पैघ डेग अछि। आजुक पूरा दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ैत तापमान, घटैत भूजल स्तर जकर अपना सब चर्चा केलहुँ हँ, आ प्रदूषण एहन गंभीर चुनौतीके सामना कऽ रहल अछि। श्रोताबंधु, विज्ञान और तकनीकके क्षेत्रमे अभूतपूर्व प्रगतिके बावजूद मानव जीवनके आधार आइयो प्रकृति अछि। यदि प्रकृति असंतुलित भऽ जाइत अछि तखन विकासके कोनो दावा अपना सब अगर करै छी तऽ ओ ठीक नहि। एहन समयमे वृक्षारोपण केवल एकटा सामाजिक कार्यक्रमे नहि बल्कि मानव सभ्यताके बजेबाक एकटा अभियान सेहो बनि चुकल अछि। गाछ जे अछि ने से धरतीके फेफड़ा अछि, ओ अपना सबके ऑक्सीजन प्रदान करैत अछि, वातावरणके शुद्ध राखैत अछि, वर्षा चक्रके सुरक्षित करैत अछि आ माटि आ जल संरक्षणमे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि। एखन अपना सब कहै छियै जे वर्षा कम होइत अछि, मुदा अपना सब ई नहि देखै छी जे अपना सबके गाछियो दिनानुदिन कटल जा रहल अछि। तऽ अपना सब पहिलेहो चर्चा केने छी जे ई पोखरि आओर गाछ जे अछि से वर्षा जलके एकर चक्रके संतुलित करैत अछि, मुदा दुर्भाग्य जे अपना सब अपन जे कार्यशैली अछि, जे अपन एकटा जीवनके दौर बना लेलहुँ हँ, ओहिमे पैघ पैमानापर गाछके कटाइ कऽ रहल छी। एकर परिणाम ई भेल अछि जे देखते छी जे गर्मीमे तीव्रता आबि गेल अछि, जलक स्रोतसब सुखाय लागल अछि आ प्राकृतिक जे घटना सब होइत अछि ओहिमे वृद्धि हुअ लागल हँ। जेनाकि देखते छी जे अनेरुआ अंधर तूफान उठैत अछि आओर एहन तूफान उठैत अछि जे लागैए जेना चारे उड़ा कऽ लऽ कऽ चलि जायत। श्रोतागण, आजुक समयमे अपना सब अगर जल पुनर्भरणके व्यवस्था नहि केलहुँ, अपना सब वृक्षारोपणके जन आंदोलनके रूप नहि देलहुँ तऽ आबयवला वर्षमे स्थिति आओर भयावह भऽ सकैत अछि। ई केवल

पर्यावरण का प्रश्न नहीं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था आ मानव अस्तित्व से जुड़ल एक विषय है। इतिहास गवाह है जे जाहि समाज के लोग सब प्रकृति के सम्मान नहीं कलन वो समृद्ध नहीं भला। भारतीय संस्कृति में अपना सब देखे छी जे पीपर बर नीम तुलसी ये सब गाछ के पूजनीय मानल गेल अछि। ये केवल धार्मिक आस्था के विषय नहीं केवल जले चढ़ेबाक गाछ नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेहो छल जे अपना सब कोरोना काल में सेहो देखलहुँ। तुलसी के गाछ अपना सब तकने फिरे छलहुँ। एखने अपना सब देखे छी जे पपीता का पात व अनेको चीज जकरा लेल अपना सबके बहुत दूर दूर तक ताक रहित छल अपना सबके बाड़िए में भेट जाए छले। अपना सबक पूर्वज प्रकृति और जीवन के बीच के जे गहीर संबंध छल ओकरा बुझने छलथि। आय आवश्यकता अछि जे वह चेतना के आधुनिक संदर्भ में अपना सब फिर से जीवित करी। श्रोता बंधु, वृक्षारोपण का वास्तविक अर्थ केवल गाछे लगेनाइ नहि जे लगा दिया और ओकरा छोड़ दिया बल्कि ओकर देखभाल को ओकरा गाछ बनवा तक संरक्षित केनाइ अछि। जेना अपना सब कोनो नेना के अगर जन्म दै छियनि तो हुनका केना नीक स्कूल में पढ़बै छी, केना हुनकर खेनाइ पिनाइ रहबाक व्यवस्था करै छी जाबत धरि ओ अपन लक्ष्य नहि पाबि लै छथि, तहिना अपना सब एकटा गाछ के ओहिना संरक्षित राखी जाबत धरि ओहिमे फल नहि लागि जाय। एकटा पौधा आबवला पीढ़ी के लेल स्वच्छ वायु छाह आ पानि संरक्षण का आधार बनि सकैत अछि। यदि प्रत्येक नागरिक वर्ष में कम से कम एकोटा गाछ लगाबथि आ ओकर जिम्मेदारी लऽ लथि तो बुझू पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में बड़ पैघ एकटा काज भऽ जायत। आ ई सब तो छोड़ू, विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दऽ रहल छथि जे भविष्य में जल संकट दुनिया के सामने सबसे पैघ चुनौती बनि सकैत अछि। ताहि कारणे आब समय आबि गेल अछि जे समाज आ प्रत्येक नागरिक मिलकर पर्यावरण संरक्षण के सर्वोच्च प्राथमिकता दी। श्रोता बंधु, वृक्ष रोपण के अपना सबके कोनो उत्सव नहीं बल्कि कर्तव्य बनेबा पड़त। धरती अपना सबके जीवन दैत अछि, आब अपना सबक जिम्मेदारी अछि जे अपना सब धरती के जे हरियाली अछि जे ओकर हरियरी अछि ओकरा वापस करी। एकटा पौधा जे अछि केवल गाछे नहीं होइत अछि, ओ भविष्य के आशा जीवन के सुरक्षा और आबवला पीढ़ी के लेल अपना सब दिस एकटा सबसे पैघ उपहार होइत अछि। तो श्रोता बंधु, एक बेर फेर हम अहाँ सबसे यह आग्रह करब जे गाछ लगाबी। आज अपना सब भूजल स्तर के बात कर रहल छी जे अपना सब एखनो कहे छी जे पानि के कमी भ रहल अछि तो जल के बचाबी आ आबवला पीढ़ी के लेल एकटा सुरक्षित आ स्वच्छ हरित भविष्य के निर्माण करी। तखने अपना सब एक बेर फेर से कहब जे अपना सबक मिथिलांचल ओहिना महान अछि, कियाकि अपना सबक अधिकांश जे पावनि तिहार अछि ओ सबटा प्रकृतिये से जुड़ल अछि। अपना सब छठि पावनि करी, अपना सब जुड़ि शीतल मनाबी, अपना सब चौरचन करी वा अपना सब कोनो आनो आन जेना कि बरसाइत भेल, मधुश्रावणी भेल, कोनो पावनि तखने न मनायब जखन कि गाछ भेटत। तऽ अपना सब मिलकर ई संकल्प ली जे आब जे कतौ अपना सब कोनो गाछ के पैघ देखी और लागे जे ई आब सुखा सकैत अछि तऽ तुरते ओकर संरक्षण में लागि जाय, ओकरा बचेबा में लागि जाय। तखने ई जगत जननी जानकी के जे भूमि अछि मिथिला अपना सबके ओहिना सुंदर लागत। तऽ सुनी एकटा सुंदर सन पहिले गीत, तकर बाद फेर हेतै गपशप।

श्रोता बंधु, एखन अपना सब अरविंद कुमार झा के स्वर में इस सुंदर संगीत के आनंद लेलौं। तो एक संग श्रोता बंधु के एक बेर फेर हम कहबन जे हमरा सभक कार्यक्रम केहन लागत अछि

अपना सबके दे जाए। तो निश्चित रूप से जे अपना सब कहलिए हैं जे अपना सब सबसे पहले माटि के जांच अवश्य करवा ली आ ओकरे अनुरूप जे अपना सबके कृषि वैज्ञानिक सलाह दे छथि तखन अपना सबके आगू के काज करवाक चाहिए। तो आब बेर भ रहल अछि प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान के। तो बिना कोनो विलम्ब केने पहले अपना सब सुनी ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूं।
1: तो इससे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर लिख लें। फोन नंबर है
0: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
1: श्रोतो, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है। कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से? पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
2: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
3: माँ माँ, बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
2: पर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज। फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
3: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ माँ, जल्दी आओ।
2: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
3: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
2: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
3: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
2: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तू बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
3: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
2: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
4: मैं हूँ सविता।
2: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
4: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
2: वो असल में राधा को ना, वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
4: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना।

0: आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
1: पर इतनी जल्दी कैसे? हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
0: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी। हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
1: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
0: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं। और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
1: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है। राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स, यही सब पसंद है उसे।
0: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है। जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसे बताइए ये बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
1: और दीदी, मैंने तो उससे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
0: सीमा जी, ये सब पुरानी बातें हैं, लड़कियां गंदी नहीं होती। उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियाँ, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है। आप समझाएं उसे।
1: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
0: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
2: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
1: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
2: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
0: गोपाल काका, ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
2: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
0: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
2: ये बात तो आप सही कह रही हैं, हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
0: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
2: जीवन शैली मतलब?
0: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल टीवी यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
2: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
0: ईश्वर ने शरीर बनाया है, पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
1: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
2: बेटा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
0: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक

0: बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं। समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियां जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं। शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
1: क्यों?
2: क्यों?
1: क्यों?
2: क्यों?
0: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
3: दीदी, इसका इलाज क्या है?
0: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे, तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
1: अगर दीदी कोई मजाक करे
0: तो उसे समझाइए, काका ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे, तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
3: दीदी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा, जरूर बोलो।
3: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था। माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
4: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
1: अरे भाई, अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जीवन का नियम है।
0: यही तो असली बदलाव है। जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है, तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाएं और अपनाएं। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
4: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
3: मुझे अब शर्म नहीं आती है, क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
1: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
5: दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं, बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं, बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे, तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे, तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे, और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण लें कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे, तो उनका बचपन नहीं छिनेगा, बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता, पर समझ उसे सुंदर बना सकती है।
6: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827।

0: 0008-8827।
1: पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तऽ श्रोता बंधु एखन अपना सब सुनि रहल छलहुँ प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। एकरे सङ्ग जे मौसम सम्बन्धी किछु जानकारी अछि सेहो किसान भाइ लोकनिके दऽ दियनि। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभागके सहयोगसँ जारी 30 मई सँ 3 जून तक मौसम पूर्वानुमानके अनुसारे अगिला 48 घंटा धरि उत्तर बिहारके जिलामे वर्षाके सम्भावना बनल रहबाक सम्भावना छै। ओकर बाद मौसममे आमतौर पर शुष्क रहत। एहि दौरान अधिकतम तापमान 35 सँ 36 डिग्री सेल्सियस जखनकि न्यूनतम 25 सँ 27 डिग्री सेल्सियसके लगपास रहि सकैत अछि। अगिला 48 घंटामे जाहि क्षेत्रमे वर्षा होयत हवाके रफ्तार 20 सँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहि सकैत अछि। एकर बाद हवाके रफ्तार कम हेबाक सम्भावना छै। अधिकांश क्षेत्रमे 8 सँ 12 किलोमीटर प्रति घंटाके रफ्तारसँ पूर्वा बसात चलबाक सेहो सम्भावना छै। सापेक्ष आर्द्रता भोरमे 85 सँ 90% आ दुपहरियामे 35 सँ 40% रहबाक सम्भावना छै। किसान भाइ लोकनि किछु समसामयिक सुझाव सेहो अछि। पूर्वानुमानित अवधिमे वर्षाके सम्भावनाके देखैत किसान भाइ जे कृषि काज अछि ओहिमे विशेष सतर्कता अपनासभ राखी। मकईके कटाइ, ओकर दौनी, दानाके सुखेनाइ, ई सब काज जे छै से मौसमके स्थितिके देखैत सावधानीसँ पूरा करी। मूँगके तैयार फसिलके जे छै से तोराइ सेहो सम्भावित वर्षाके ध्यानमे राखैत समयपर आ सतर्कतासँ पूरा कऽ लेबाक चाही। किसान भाइ खरीफ प्याजक खेतीके लेल नर्सरी यानी कि बीया स्थल तैयार कऽ ली। स्वस्थ पौधाके लेल नर्सरीमे गोबरके खाद दी। छोट छोट जे छै से उचगर क्यारी बनाबी जकर चौड़ाई 1 मीटर आ लंबाई जे छै से सुविधाके अनुसार अपनासभ राखि सकै छी। खरीफ प्याजके लेल N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ई सब किस्म जे अछि से अनुशंसित अछि। बीया खसेबासँ पहले बीज उपचार अपनासभके अवश्य कऽ लेबाक चाही। बीया दर 8 सँ 10 किलोग्राम जे छै से प्रति हेक्टेयर राखी। बीया प्रमाणित स्रोतेसँ अपनासभ कीनके लगाबी तऽ नीक रहत। किसान भाइ धानके बिचड़ा बीज स्थलीमे लगेबाक काज शुरू कऽ दी। 10 जून तक जे बेसी अवधिवला धानके बिचड़ा जे छै से खसेबाक उपयुक्त समय अछि। बेसी अवधिवला धानके प्रजाति जेनाकि राजश्री, राजेन्द्र मंसूरी, राजेन्द्र श्वेता, स्वर्णा, स्वर्णा सब 1, PPT 5204 ई सब नर्सरीके बुआइ कयल जा सकैत अछि। नीक पौधाके लेल खेतके नीक तैयारी करी आओर सरल गोबरके खाद दी। क्यारी सब 1.5 सँ 1.5 मीटर चौड़ा राखी आओर बीया अपना सबके सदैव प्रमाणित स्रोतसँ लेबाक चाही। किसान भाइ 1 हेक्टेयर रोपाइके लेल 800 सँ 1000 वर्ग मीटर नर्सरी पर्याप्त होइत अछि। बीया बाउसँ पहले बीज उपचार अवश्य करी। बीया जनित रोग सबसँ जे अपना सब एकर माध्यमे बचाव कऽ सकै छी आओर एकरे सङ्ग घड़ीके सुई अपना सबके इशारा कऽ रहल अछि जे आब खेती गृहस्थीके समेटी आओर अन्नदाता किसान भाइ लोकनिसँ विदा ली। तऽ नमस्कार किसान भाइ लोकनि।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाम घर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में पटना से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। और राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग आज भारत की 5 दिनों के दौरे पर बिहार के ग्याजी पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से ग्याजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। सोमवार को म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से वार्ताओं के लिए मुंबई भी जाएंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पटना समाहरणालय भवन में आज जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और जिला नागरिक परिषद की बैठक आयोजित की गई। श्री चौधरी ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
4: आज पटना जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायकों और माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए जो लागू करने लायक थे हमने निर्देश दिया है और जिला पदाधिकारी ने तत्काल उसको लागू करने का आदेश भी दे दिया है और उनके बहुमूल्य सुझाव भी आए हैं।
0: पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि बिना निबंधन वाली नाव का परिचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
5: परिचालन को लेकर के नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी SDO और DSP सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। कई जगह है क्योंकि लंबे क्षेत्र है और जगहें ज्यादा है, कई जगहों से परिचालन होती है। सब जगहों को आइडेंटिफाई करके पहले नाविक

0: को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। पर्यटन गार्ड के नाविकों के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। ये वहां से बड़ी संख्या में नटादियारा के लोग आते जाते।
1: जिलाधिकारी ने बताया कि सूर्यास्त माफ कीजिएगा जिलाधिकारी ने बताया कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गंगा नदी में नावों का परिचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पटना के सभी घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800-11-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अंतिम आदेश पारित किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों में अनुचित लाभ लेने के आरोप में निलंबन की गई है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी योगेश कुमार सागर को और इसी आरोप के आधार पर जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
5: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता समाज को जागरूक तथा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में संगठन विस्तार की सराहना की है। नवनियुक्त सभी प्रदेश पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना में आज बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर पदयात्रा निकाली गई। एक रिपोर्ट।

0: आज सुबह 6 बजे पटना के गांधी मैदान से आयकर गोलम्बर तक पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लगभग 500 पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा से पहले गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई।
1: मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा।
0: सभी प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए और स्वच्छ तथा हरित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
2: मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मा गांव के गणेश चौक के पास NH 227 पर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग के जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
3: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सबसे अधिक 116.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के कस्बा में 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि गया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहे लाभों के लिए लाभुकों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सारण जिले के कई लाभुकों ने बताया कि गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं उनके परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
4: मेरे मुन्ना कुमार नाम है, छपरा जिला घर है। मेरा शौचालय मिला है, जितना गरीब का अच्छा हुआ काम मिला है। सरकार की नियम और आगे में बढ़े, काम अच्छा हो।
5: मेरा नाम नवीना पंडित है। सरकार के राशन कार्ड, राशन और गैस मिला है सरकार।
2: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिनों की भारत यात्रा पर गया जी पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। और राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आभाष रंजन का है और इसे पेश कर रही हैं हमारी संवाददाता अंशु अवस्थी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले दिनों जहानाबाद जिले के दौरे पर थे। मखदुमपुर प्रखंड की पुंदाह पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री चौधरी ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद अंतर्गत विभिन्न गांवों में संचालित इस योजना के लिए सरकार ने 42.98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। श्री चौधरी ने कहा कि इस योजना के शुभारंभ से लगभग 360 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। जिले में तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। इधर आंधी तूफान की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले पूरा जिला भीषण गर्मी और उमस की चपेट में था। बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल परिसर में आयोजित अंतर विद्यालय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता 2026 में जहानाबाद जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में कुल 11 पदक प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। जिला पदाधिकारी जहानाबाद अलंकृता पांडे ने विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों एवं प्रशिक्षक से अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात की। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी तथा भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। जहानाबाद जिले की 15 पंचायतों में आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए 2 जून 2026 को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने काको प्रखंड के पंचायत सरकार भवन पिंजौरा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों को पूर्णता पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इधर जहानाबाद नगर परिषद में स्थायी सशक्त समिति का चुनाव सम्पन्न हुआ। इस चुनाव में क्रम संख्या 1 से संजय कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनके अलावा क्रम संख्या 2 से रेशमी देवी ने 27 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि क्रम संख्या 3 से संजीव कुमार 22 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचित होने के बाद संजय कुमार ने सभी वार्ड पार्षदों का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की कि वे पुरानी राजनीतिक बातों को भूलकर शहर के विकास के लिए मिलकर कार्य करें। मगध रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकास वैभव ने जहानाबाद साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। जांच में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। टहटा थाना में दर्ज एक मामले की समीक्षा के दौरान जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई थी। इसके बाद IG ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू

करने का भी निर्देश दिया गया है। जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। कार्यक्रम में नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। श्री सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 15 वर्षों में पार्टी का व्यापक विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि नए सदस्यों को पार्टी के सिद्धांतों, नीतियों और कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। जहानाबाद जिले में बीते दिनों बकरीद, ईद उल जोहा का त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में सम्पन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आभाष रंजन का था। इसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता अंशु अवस्थी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। लीजिए सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। पहला गीत हमने लिया है फिल्म आई मिलन की रात से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आई मिलन की रात से ये गीत मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म लावारिस से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथी। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीतों का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फिल्म लावारिस का ये गीत उदित नारायण साथी और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार। इंडीवर के लिखे गीत को संगीत दिया है बप्पी लहड़ी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का ये गीत। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

श्रोताओं नमस्कार। आज के विज्ञान कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं सुरभि। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे जिसका विषय है विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ। साथ ही आप सबों को सुनवाएंगे वार्ता जिसका विषय होगा सूक्ष्म जीवों की दुनिया, और वार्ताकार होंगे डॉक्टर रघुनाथ सिन्हा। श्रोताओं अनादिकाल से भारत में विज्ञान की परंपरा विद्यमान रही है। हरप्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों में भी विज्ञान की समझ थी। प्राचीन काल में भारत में विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में महर्षि सुश्रुत के द्वारा खोजी गई शल्य चिकित्सा है। दुनिया आज उन्हें फादर ऑफ सर्जरी मानती है। नागा अर्जुन ने रसायन विज्ञान को जन्म दिया। मनुष्य और विज्ञान का विकास एक साथ होता है। बेबर कहते हैं कि दर्शन के बिना विज्ञान वैसा है जैसे एकता या संगठन के बिना कोई समूह, आत्मा के बिना शरीर। इसी प्रकार विज्ञान के बिना दर्शन। श्रोताओं धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण और परिवहन व्यवस्था का विकास सिंधु सभ्यता के समय हो चुका था। भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर चंद्रयान के प्रक्षेपण तक सफलताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत अपनी अनगिनत उपलब्धियों के चलते 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 81वें स्थान पर था, जो 2023 में 40वें स्थान पर आ गया है। श्रोताओं भारत ने साइंटिफिक पब्लिकेशन में नया कीर्तिमान रच दिया है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशन रैंकिंग में 7वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने विज्ञान के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रोताओं आज हम विज्ञान की उसी प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। आधुनिक युग में सबसे शक्तिशाली देश वह है जिसने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है जिसमें भारत भी शामिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला अमेरिका, चीन, रूस के बाद अपना भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में राफेल, तेजस, सुखोई, MiG-29 और MiG-21 शामिल है। ग्लोबल फायर पावर ने भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना माना है। श्रोताओं भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर सेना है। भारत वैश्विक शांति और समृद्धि के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास से अपने मित्र राष्ट्रों का सहयोग भी करता है। भारत की तीनों सेनाएं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से युद्ध अभ्यास भी करती रहती है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है। आज हमारा भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है और सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम भी है। श्रोताओं भारत में प्राचीन काल से चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अग्रणी भूमिका रही है। यहाँ पर शल्य चिकित्सा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती थी। भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने शारीरिक इलाज के साथ मस्तिष्क इलाज की तकनीक विकसित की थी। बिना मस्तिष्क इलाज के शारीरिक इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता है। श्रोताओं मस्तिष्क और शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। आज दुनिया के कई देश साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक चिकित्सा का विकास कर रहे हैं, जबकि भारत में इस तरह के चिकित्सा का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था। भारत ने मानव चिकित्सा

0: चिकित्सा के साथ पशु चिकित्सा पर भी ध्यान दिया। हमारे देश में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। हमने चेचक, हैजा, येलो फीवर, कैंसर और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। कोरोना के समय में वैश्विक स्तर पर भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार का आकार 2022 में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2023 से 2030 तक 25.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। श्रोताओं, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में इलाज 65 से 90% सस्ता और क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। 21वीं सदी को सूचनाओं का युग कहना कोई जल्दबाजी नहीं होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने संचार के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किया है, बात ऑप्टिकल फाइबर की हो, वाईफाई अथवा 5G की, या फिर सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग की। आज सूचना संचार के विकास से भारत ई प्रशासन, डिजिटल इकोनॉमी, ई लर्निंग, मौसम पूर्वानुमान में आगे है। संचार के विकास ने रोजगार सृजन का द्वार खोल दिया है। भारत का IT सेक्टर दुनिया को राह दिखा रहा है। सूचना संचार ने मनुष्य को आपस में जोड़ने के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारत में कृषि के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत ने आज कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खुद को स्थापित किया है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर के साथ अनाज निर्यातक देशों में एक है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम, दाल खेती योग्य भूमि में प्रथम और कपास के संकर किस्मों को विकसित करने में पहला स्थान रखता है। भारत विश्व में कुल उर्वरक उपयोग में चौथा स्थान रखता है। परजीवी खेती, फर्टिगेशन, कृत्रिम बीज, अनुवांशिक संवर्धित बीज को बढ़ाने में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत आज पूरी तरह से जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि को रोजगार के साथ जोड़ दिया है। आज कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। श्रोताओं, आकाश में उड़ना और धरातल पर बात करना किसे पसंद नहीं है। इन्हीं ख्यालों को पूरा करने के लिए हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने क्या कुछ नहीं किया है। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने में सफलता हासिल की है। भारत दुनिया के लगभग 70 देशों के उपग्रह को लॉन्च किया है। भारत के पास PSLV और GSLV जैसे अत्यंत सफल प्रक्षेपण यान हैं। भारत ने उपग्रह को ध्रुवीय कक्ष में स्थापित करके कीर्तिमान कायम किया है। भारत ने रोहिणी, एप्पल जैसे उपग्रह को स्थापित किया है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में विश्व में चौथा स्थान है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों की प्राथमिकता देश को विकसित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। श्रोताओं, 21वीं सदी में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का एकमात्र विकल्प विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। विज्ञान हमारे समाज एवं संस्कृति का हिस्सा है। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से कठिन कार्य को सरल बना दिया है। आज देश की तरक्की के पैमाने का निर्धारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जो देश विज्ञान के क्षेत्र में जितना उन्नति करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। विज्ञान को पृथक कर किसी समाज या राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर रघुनाथ सिन्हा और वार्ता का विषय है सूक्ष्म जीवों की दुनिया।
1: हम जिस दुनिया में रहते हैं वह दुनिया हमारी पृथ्वी है और इसके अंदर दो दुनिया है, एक अदृश्य दुनिया, दूसरी दृश्य दुनिया। दृश्य जगत में पेड़ पौधे, मकान, सड़क, नदी, पहाड़, ये बड़ी बड़ी चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन मनुष्य के आंख के देखने की एक न्यूनतम सीमा होती है। 1 मिलीमीटर के लगभग 100वें हिस्से के बराबर की जो चीजें इस पृथ्वी पर हैं, वे हमें दिखती हैं, लेकिन उससे नीचे आकार की कोई भी वस्तु हमें नहीं दिखती है। हमारे चारों तरफ हवा है, लेकिन हवा अदृश्य है, क्योंकि हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनके आकार

अत्यंत छोटे होते हैं, जो खुली आंख से हमें नहीं दिखते हैं, मगर यंत्रों की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे जीवों की है जो हमें आंख से दिखता नहीं है, क्योंकि उनका आकार 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से नीचे है। इन वस्तुओं को हम सूक्ष्म कहते हैं। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सूक्ष्म की बड़ी व्याख्या की है और सूक्ष्म जगत के बारे में अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम यहाँ चर्चा सूक्ष्म जीवों की करेंगे जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र दिखाता है। ये सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बना लिए हैं। आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का नाम है ओम, 1 एंगस्ट्रम माइक्रोस्कोप, यानी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिससे 1 मिलीमीटर के लाखवां हिस्सा छोटा चीज को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी ने क्रांति कर दी है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया हवा में सर्वत्र व्याप्त है, पानी में, समुद्र में, नदी में, पोखरा में, नाले में, मिट्टी के कनकन में है, समुद्र की पेदी तक भी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी है, ठंडे से ठंडे जगह पर हैं, गर्म से गर्म जगह पर हैं। इन्हें देख पाने का यंत्र 18वीं और 19वीं सदी में बनाए गए। सूक्ष्म जीवों से हमारा परिचय 2 प्रकार से होता है। पहला, उससे होने वाले परेशानियां, उससे होने वाली बीमारियां, उनसे होने वाले घाटा के कारण, प्लेग, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, फाइलेरिया, मीजिल्स, ऐसे हजारों रोग हैं जो इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। यह उनका एक अंधेरा पक्ष है, लेकिन इनका एक उजला पक्ष भी है। इन सूक्ष्म जीवों के बिना हमारा जीना दूभर हो जाएगा। इनकी मौजूदगी हमारे अस्तित्व को कायम रखता है। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और सबसे बड़े मित्र भी हैं। ये संसार यानी पृथ्वी के कोने कोने में मौजूद हैं। यहाँ तक कि हर मनुष्य के शरीर के आंत में, पेट में 5.5 किलो सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। इनकी मात्रा अगर घट जाए या बढ़ जाए, दोनों ही परिस्थिति में इनका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में इसके लिए अनेक नाम दिए गए हैं। सबसे पहला नाम, चूंकि यह सूक्ष्मदर्शी से ही दिखता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका संक्षेप रूप होता है माइक्रोब्स, लेकिन इनका आकार, इनकी संख्या से अतिरिक्त महत्वपूर्ण होता है इनका काम। तो काम के आधार पर इनके लिए अंग्रेजी में शब्द दिया गया है डीकम्पोजर, यानी अपघटक, यानी जो बनी बनाई चीज है उसको ये सराकर, गलाकर मिट्टी, पानी, हवा में बदल देते हैं। इनको एक नया नाम भी दिया गया जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि मान लीजिए कोई मरते हैं, कब्र में उनके शरीर को रखा जाता है और कुछ महीनों के बाद वहां से कब्र में से वो लाश गायब है। तो गायब नहीं हुआ, उस लाश का बहुत सा हिस्सा मिट्टी में बदल गया, बहुत सा हिस्सा जो पानी था वो पानी बन के भाप बन के उड़ गया, और उनके सरने गलने से गैसें भी निकली जो हवा में मिल गया। तो हवा, मिट्टी, पानी में ये किसी भी चीज को बदल सकते हैं। पुराना मकान है, पिछले 25-30 सालों से उसकी रंगाई, पोताई, देखभाल अगर नहीं की जा रही है तो सूक्ष्म जीवों की दुनिया उनके चारों तरफ लग जाती है। तो प्लास्टर झड़ने लगता है, ईंट पाउडर बन के गिरने लगता है, लकड़ी के दरवाजे खराब हो जाते हैं, फर्श कमजोर हो जाता है। ये सब सूक्ष्म जीवों का ही काम है। इन सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए ही हम साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। अगर साफ सफाई बंद कर दें, बर्तन बिना धोए खाएं, पुराने बर्तन में बिना धोए खाना बना लें, तो इन सूक्ष्म जीवों को वृद्धि का सुअवसर मिल जाता है। हम सभी जो नौकरी करते हैं, सुबह तैयार होकर, तरोताजा होकर, चमकते हुए अपने कार्यालय में पहुंचते हैं, लेकिन 4 बजते बजते हम सबों के चेहरे पर 12 बज जाता है। वैसा चेहरा नहीं रहा।

जाता है। यह सूक्ष्म जीवों का ही काम है। हम तो साफ सुथरा करके आ गए, मगर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के सूक्ष्म जीव हमारी त्वचा पर बैठते हैं और अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे चेहरा पर उन सूक्ष्म जीवों का संसार खाना पीना शुरू कर देता है अपना। जो एक्सपोज्ड अंग हैं हमारे, वहाँ की त्वचा पर बैठकर वहाँ की त्वचा को वह बदलना शुरू कर देते हैं। तो चार बजते बजते उसी व्यक्ति का चेहरा अलग तरह का लगता है। हम अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू मारते हैं, पोछा करते हैं, उन्हीं सूक्ष्म जीवों को वहां से हटाने के लिए करते हैं, लेकिन यह काम रोज करना पड़ेगा। इसके बिना ये सूक्ष्म जीव हमारे खाना को खराब कर देंगे, हमारे घर को बदबूदार बना देंगे, इसलिए वहां सफाई करते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी मौका मिलता है शल्य चिकित्सा का, ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सूक्ष्म जीवों को बिल्कुल नहीं रहने देना है, इसलिए वहाँ एक विशेष व्यवस्था करते हैं। हम सफाई पर विशेष ध्यान रखते हैं, पर्दा के अंदर उसको

आपकी त्वचा को वह बदलना शुरू कर देते हैं तो चार बजते बजते उसी व्यक्ति का चेहरा अलग तरह का लगता है। हम अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू मारते हैं, पोछा करते हैं, उन्हीं सूक्ष्म जीवों को वहां से हटाने के लिए करते हैं, लेकिन यह काम रोज करना पड़ेगा। इसके बिना ये सूक्ष्म जीव हमारे खाना को खराब कर देंगे, हमारे घर को बदबूदार बना देंगे, इसलिए वहां सफाई करते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी मौका मिलता है शल्य चिकित्सा का, ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सूक्ष्म जीवों को बिल्कुल नहीं रहने देना है, इसलिए वहाँ एक विशेष व्यवस्था करते हैं। हम सफाई पर विशेष ध्यान रखते हैं, पर्दा के अंदर उसको ढकते हैं, लोग जूता पहन के नहीं जाते हैं, चेहरे पर नकाब पहनते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि कोई सूक्ष्म जीव मरीज के चिकित्सा के समय उसके भीतर नहीं चला जाए, इसकी विशेष व्यवस्था की जाती है। अगर ऐसी व्यवस्था न करेंगे तो सूक्ष्म जीव अपना असर दिखा देंगे। अब हम इन सूक्ष्म जीवों के रचना पर, उनके परिवार पर, तो सबसे पहली बात कि जिनका आकार 1 मिलीमीटर से 100वें हिस्से से नीचे होगा उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। आमतौर पर इन सूक्ष्म जीवों में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहली श्रेणी में बैक्टीरिया नामक जीव आते हैं जो एक कोशीय हैं। बैक्टीरिया हमारे पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम जीव हैं, सबसे सरलतम जीव हैं और सबसे कारगर जीव हैं। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने इनका नाम रखा है बायो इंजीनियर्स। ये दिखते नहीं हैं, लेकिन अपनी इंजीनियरिंग का कमाल ये दिखाते रहते हैं। पहली श्रेणी जिसमें कि बैक्टीरिया आते हैं, ये एक कोशीय जीव होते हैं, सबसे सरल जीव होते हैं, और इनके काम का कुछ नमूना जो बड़े पैमाने पर हुआ। पहला, जमीन के अंदर जहां कहीं भी तेल के कुएं हैं, तेल के खान हैं, ये बैक्टीरिया का कमाल है। लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले के जीवों को जमीन के अंदर इन सूक्ष्म जीवों ने कच्चे तेल में बदल दिया और आज उस कच्चे तेल को बाहर लाकर रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल, मोम, अलकतरा, ईंधन गैस इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो यह करिश्मा बैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों का है। इस बैक्टीरिया के बाद जो दूसरा परिवार सूक्ष्म जीव में आता है, वैज्ञानिक भाषा में उसको कहते हैं प्रोटोजोआ। एक कोशीय जीव हैं। शुरू में इनको जानवर कहा गया, लेकिन बाद में जानवर जिसको एनिमल कहते हैं उसकी परिभाषा बदल दी गई। ऐसे जीव जो खाना खाते हैं उनको हम जानवर के रूप में परिभाषित करते हैं। एनिमल्स आर दोज विच आर कंज्यूमर्स, ये उपभोक्ता हैं, ये उपभोग करते हैं। किसका उपभोग करते हैं? तो पौधों का और जानवरों का। हम जितने भी जानवर हैं उसमें से अधिकांश शाकाहारी हैं, जो पौधों की पत्ती को, फल को, बीज को, जड़ को खाते हैं। दूसरे जानवर भी हैं जो खाते तो हैं मगर पौधा नहीं खाते हैं, जानवर को खाते हैं, तो वे मांसाहारी जीव हो जाते हैं। इस शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में सूक्ष्म जीवों की मदद के बिना जीवन नहीं चल सकता है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनके पेट में भोजन पच जाए इसके लिए भी सहायता बैक्टीरिया ही करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ करते हैं। तो ये हमारे शरीर की क्रियाओं को संचालित करने में भी मदद करते हैं, लेकिन इनके कुछ सदस्य हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। एक बीमारी है पेचिस, तो प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव से होता है। कालाजार, यह भी प्रोटोजोआ के सूक्ष्म जीव से होता है। अफ्रीका में एक बहुत भयानक बीमारी होती है जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इस बीमारी में मरीज को नींद आती है और फिर वह नींद टूटती नहीं है, मौत की नींद सो जाता है। इसके पीछे भी प्रोटोजोआ का एक सदस्य है जो सूक्ष्म जीव है। कालाजार, यह भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अनेक ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ परिवार के सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तीसरा परिवार जो इस सूक्ष्म जीव में आता है उसको सामान्य भाषा में फफूदी कहते हैं। फफूदी का एक सदस्य ऐसा है जिससे हम सभी परिचित हैं, गोबर छत्ता, जिसको अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं। आजकल कुछ खाने वाले भी मशरूम बाजार में आ रहे हैं जिनकी खेती

करते हैं वैज्ञानिक, उसको पहचानते हैं तो वह दृश्य जगत का है। लेकिन फफूदियों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे फफूदियों की है जो हमें साफ साफ नहीं दिखते, सूक्ष्म जीवों की दुनिया में आते हैं। ऐसे जीव में सबसे पहला नाम आता है ईस्ट का, और इस सूक्ष्म जीव ने वैज्ञानिकों को, मनुष्यों को परिचय कराया एक ऐसी रासायनिक क्रिया से जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें चीनी, चावल, फल के चीनी, इनको अल्कोहल में बदला जा सकता है। रासायनिक क्रिया के द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदल देगा, अंगूर के रस को अल्कोहल में बदल देगा। इस क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। मानव सभ्यता में जो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी मनुष्य को मालूम हुआ वह था फर्मेंटेशन। तार के पेड़ों से निकलने वाले रस, खजूर के पेड़ों से निकलने वाले रस इस ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में बदल जाते थे, और यह आज सारे संसार में बड़े उद्योग का रूप धारण कर चुका है। अब हम सूक्ष्म जीव के उजले पक्ष की ओर हम ध्यान दें कि यह हमारा मित्र कैसा है। तो बेकरी, बिस्कुट बनाना, पाव रोटी बनाना, अल्कोहल बनाना, ये सारे चीज सूक्ष्म जीवों की सहायता के बिना संभव ही नहीं है। जो बिस्कुट उद्योग चल रहा है उसका आधार ही है ईस्ट। ईस्ट एक फफूदी है जो अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी जब पेट्रोल की कमी हो गई थी, आपस में लड़ने वाले देशों को पेट्रोल चाहिए था हवाई जहाज उड़ाने के लिए, टैंक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, तो कहाँ से आएगा। तो उस समय के एक यहूदी वैज्ञानिक ने यह फॉर्मूला दिया कि पहले तो उसको हम अल्कोहल में बदलेंगे और अल्कोहल से इसका परिवर्तन ईंधन में कर सकते हैं। तो आज भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। करोड़ों साल पहले सूक्ष्म जीवों ने धरती के अंदर कच्चा तेल बना दिया, और आज हम धरती के बाहर उस सूक्ष्म जीवों की सहायता से अल्कोहल बना रहे हैं। तो यह सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में योगदान है। जितने भी उद्योग हमारे देश में चल रहे हैं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, ये सारे उद्योगों में कहीं न कहीं सूक्ष्म जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम एक उदाहरण ले चाय का, जो प्रतिदिन अधिकांश मनुष्य का जीवन सुबह की चाय से शुरू होती है। तो इस चाय को इतना खुशबूदार बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय सूक्ष्म जीवों को जाता है। विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो चाय की पत्तियों पर ही विकसित होते हैं और उनमें एक विशिष्ट फ्लेवर पैदा करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की दुनिया में ये तीन परिवार हुए। पहला परिवार बैक्टीरिया का हुआ, जिसको एक अलग श्रेणी में रखते हैं, जिसका नाम है मोनेरा। दूसरा परिवार एक कोशीय प्रोटोजोआ का हुआ, जिसको नाम वैज्ञानिकों ने दिया है प्रोटिस्टा परिवार। तीसरा फफूदियों का है, जिसको कहते हैं फंजाई परिवार। लेकिन इसके अलावे जो हमारा दृश्य जगत है उसमें दो तरह के जीव दिखते हैं, एक जीव पौधा, दूसरा जीव जानवर। लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अदृश्य हैं, सूक्ष्म हैं। ऐसे जानवर में एक नाम आया फाइलेरियल वर्म। वह इतना छोटा होता है कि आंख से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फाइलेरिया की बीमारी उसके कारण होगी। दूसरी बीमारी होती है रिंग वर्म, यह त्वचा से संबंधित रोग है। तो वो बीमारी तो आप देख रहे हैं, डॉक्टर वहां की त्वचा को माइक्रोस्कोप से जांचते हैं तो उनको वो दिख जाता है। फाइलेरिया के रोगी के खून में फाइलेरियल वर्म नामक जानवर होता है जो खुली आंख से हमें नहीं दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि दुनिया में कोई चीज केवल फायदा नहीं दे सकता है, कोई चीज केवल घाटा नहीं दे सकता। सूक्ष्म जीवों की दुनिया हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ये सबसे महती भूमिका यह निभाते हैं कि कचरों को मिट्टी, पानी, हवा में बदल देते हैं। हमारे सेफ्टी टैंक में जो मल त्याग करके जमा होता है उसको भी उपयोगी रूप में बदल देते हैं। तो इनका एक धनात्मक पक्ष है, ऋणात्मक पक्ष भी है। हमें चुनना है। माइक्रोबायोलॉजी अब हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, हर क्लास में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि इसका महत्व ही इतना है कि अगर हम इन जीवों के बारे में जानते रहेंगे तो इसमें से शत्रु और मित्र को पहचान सकते हैं। अभी की दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी है वह है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी।

0: और जी, इस बायोटेक्नोलॉजी का आधार ही है सूक्ष्म जीव। अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बैक्टीरिया ही ऐसे जीव हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम मिला जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और अगर ये एंजाइम नहीं मिले होते तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिलता। आज हम प्रयोगशाला में इंसुलिन बना रहे हैं, प्रयोगशाला में तरह तरह का प्रोटीन बना रहे हैं, ये सभी चीजें हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों की महत्ता को देखते हुए संसार के जो 203 देश हैं, हर देश ने अपने यहाँ शोध संस्थान खोले हैं, अपने यहाँ शिक्षा के हर स्तर में, हर वर्ग में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, आम नागरिकों को इन जीवों से परिचित कराना आवश्यक समझा है। तो यह हमारे ऊपर है कि हम इस सूक्ष्म जीवों की दुनिया का कैसे लाभ उठावें।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था सूक्ष्म जीवों की दुनिया और वार्ताकार थे डॉक्टर रघुनाथ सिन्हा। इसी के साथ आज के विज्ञान कार्यक्रम के इस अंक से प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद के साथ मुझे यानी सुरभि को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, रेडियो सेट के अलावे आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। इसके लिए आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल सेट पर न्यूज ऑन AIR प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करके आप सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में DK शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे।

0: और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति

का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों किसानों और गाँवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मस्कूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बरवक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राब्ताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवाजन इस्तेमाल और मिट्टी की जांच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मस्नूई जहानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषी

ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाका खेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिना रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संग मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिशा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से 1 माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन

लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण यह अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी

0: ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम

0: या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम

0: होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर के चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
4: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
4: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट

0: संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली दो तीन ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो।
0: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स।
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें, जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं, मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस है, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और पता है ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो

0: 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ, उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड या
0: ये ऐसे जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो

0: शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है
1: जी
0: जी।
1: जी
0: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो
1: जी
0: यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी
0: बिल्कुल
1: कारण से,
0: जी
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें
0: जी।
1: तो
0: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कला

0: Tree and Mohammad Rafi Awards, her performances are not only technically flawless but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे. मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा. और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर.
0: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग. द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे. दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा. She concludes this rag with a drut composition set to ektal with the lyrics Manu nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री, त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं

0: राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र

ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।